मीडियम वेव 320.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सभा की शुरुआत रोज ही की तरह समाचारों के साथ करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, वंदना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है, क्योंकि हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत और सरल हो जाता है। ईश्वर इस जगत के कण-कण में हैं, वो सदा हमारे पास हमारे सुख दुख में रहते हैं। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा आ रही हो, तो ऐसे में अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाएं। ऐसे विकार ईश्वर के मनन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने या किसी गुरु के आशीर्वाद से भगवान और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको स्वयं पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। कर्म में विश्वास करना ही स्वयं पर विश्वास करना है, और स्वयं पर विश्वास करना ही ईश्वर पर विश्वास करना है।

यदि आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं, तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जिस प्रकार दूध में उपस्थित होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी स्थानों पर उपस्थित ईश्वर नजर नहीं आता।

संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा नहीं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सबको वही दे रहे हैं। जो इस बात से मुनकर है, इस बात को नहीं मानते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: भगवान महावीर ने कहा है, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जहाँ कार्य क्षमता बढ़ती है, वहीं उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ मात्र सुख, हर्ष या खुशी नहीं है, वह सब पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थ से जुड़े सुख, हर्ष आदि के साथ दुख और विषाद भी निश्चित होते हैं। प्रसन्नता वस्तु निरपेक्ष होती है, वह चित्त की पवित्रता या स्वच्छता का पर्याय है और उसका उदय होता है राग द्वेष मुक्त चेतना में। राग द्वेष और मोह चेतना जितनी क्षीण या मंद होती है, उतनी ही प्रखर होती है प्रसन्नता की अनुभूति। मानव मन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रफुल्लता या उदासीनता। ये उदासीनता मध्यस्थता या समता से भिन्न है, यह है निराशा की संतति है। खिले हुए और मुरझाए हुए फूल में जितना अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है प्रफुल्लता और उदासीनता में। प्रसन्नता चित्त का विस्तार है और उदासी चित्त की सिकुड़न। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद अनुकूल

0: सफलता भरे अवसर हों तभी प्रसन्न हम रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर यह पूरा सत्य नहीं है। यदि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, विवेकशील व्यक्ति सदा प्रसन्न ही रहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति से वे बहुत ऊपर रहते हैं। सही माने में इंसान वो है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहे, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। बहुत से लोग बस दुखों के गीत गाते हैं। कोई भी पर्व हो खुशियों का, वो दुख ही मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मनोविज्ञान का निष्कर्ष है, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त और नम्र होते हैं उनके हर काम में सफलता मिलती है। जिस तरह सागर की सतह पर उठने वाला हर बुलबुला उछलता हुआ दूर तक चला जाता है, वैसे ही मुस्कान का प्रभाव भी दूर तक चला जाता है। मुस्कुराहट मन आंगन घर आंगन को प्रसन्नता से भर देती है, मित्रता के संसार को समृद्ध करती है। भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के इस युग में जिंदगी के तनावों दबावों को कम करने और आनंदित जीवन जीने का मंत्र है प्रसन्नता।
1: मेरा आपकी
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम खेती हरा वास्ते, जिसमें आज जानकारी देंगे बाग लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मानस गान का समय रहेगा 7:20। आज आपको सुनवाएंगे भाग संख्या 249। 7:30 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात। आज बात करेंगे गर्मी से बचाव उस्ताद योजना और रिश्तों का सम्मान। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे 8:45 पर। 9:10 पर मुरमंगल में आज कलाकार होंगे बैरागनाथ। 9:30 पर फिल्म संगीत और प्रातः 10 कार्यक्रम सुहाना सफर। प्रातः 11 सैनिकों के लिए और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। 12:30 पर सुगम संगीत आप सुन पाएंगे। 12:50 पर खेत खलिहान में आज बात करेंगे ग्वार की उन्नत खेती कैसे करें। 1:05 पर महिला जगत में आज चर्चा करेंगे प्रसन्नता अपनों से बात करने में। सैर करें ऊटी हिल स्टेशन, मौसमी फल आड़ू, साथ ही साथ वार्ता सुनवाएंगे आधुनिक समय में शिक्षा। वार्ताकार हैं मनीला सचदेवा। दोपहर 2:30 पर फिल्म संगीत और उर्दू सर्विस के प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से 3:00 से अनुप्रसारण।

प्रसारित किए जाएंगे। ये वाणी सुनिए शाम 5 बजे। आज वार्ता सुनवाएंगे प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत की पुण्यतिथि पर। वार्ताकार होंगे अंतरिक्ष शर्मा, साथ ही साथ फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद और आज का इतिहास। चौपाल में शाम 7 बजे ईमेल और पत्रों पर आधारित पत्रोत्तर, साथ ही साथ बाजार भाव और मौसम की

दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर रिले किया जाएगा। हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो मन भवन आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। निर्देशक और संयोजक निवेन सिसोदिया और प्रस्तुतकर्ता विकास पारीक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे

0: इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकम इत्येतैः सह, राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73,87,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ऑस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25-60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग

0: विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said, the PM's visit would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the 3rd India-Nordic Summit. This is the final leg of his 5-nation tour. Earlier yesterday, India-Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. The West Bengal government has notified the Annapurna Yojana to provide assured monthly financial assistance of 3,000 rupees to women for the socio-economic upliftment. The scheme introduced by the Department of Women and Child Development and Social Welfare will come into effect from the 1st of next month. Under the scheme, the financial assistance will be transferred directly to the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries through direct benefit transfer or DBT.

0: Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches of an Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, Mr. Nadda highlighted that India has operationalized over 1,85,000 Ayushman Arogya Mandirs across the country, delivering comprehensive primary health care services right at the community level. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. The U.S. Department of State announced the visit. State Department spokesman Timmy Pigott said during his travel from the 23rd to 26th of May, Mr. Rubio will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. Mr. Pigott said he will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. The U.S. Embassy in New Delhi has said that Mr. Rubio would attend the Quad meetings on the 26th of May. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में आज जानकारी देंगे बाग लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों यहाँ तो अपने ही क्षेत्र का अपना जगह किसान भाई लोग है बे कई त्रियांग जी की बागवानी है कई त्रियांग जगह फल वृक्ष है बे लगा रखे है और अपने जो गंगानगर जिलो है वो तो यहाँ केस कहाँ का फल वृक्षांगा माँ या फिर फणांगा माँ अपने किन्नू का माँ सबसे ज़्यादा मशहूर है और अट्ठा का जगह किन्नू है संतरा है बे अपने देश विदेश में अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ केस कहाँ के पसंद करे लोग और अपने ही क्षेत्र का जगह भाई लोग बागवानी कर रखी है बन कई त्रियंगी जी की बातें हैं बंग ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बाग लगानता टेम और बाग लगाने के बाद गमा जिकी बातों को ध्यान रखना है वो ये है कि कई बार अपन छोटी मोटी जिकी भूल चूक हो जाए बिंग वजह से अपन बहुत बड़ो नुकसान हो जाए या फिर कई बार अपन यहाँ हो जाओ कि बागवानी से या नर्सरी से छोटी जिकी पौधा वाले आगे लगा दें और अपन कहीं भी त्रियंग कोई जानकारी ना है तो फिर देखो बाद में नुकसान होने की जिकी संभावना वा ज़्यादा बन जाए क्योंकि कई बार बीमारियाँ हैं कई त्रियंग जगह कीट है वे बाद में लग गए तो जी कई बार यहाँ हो जाए कि जगह छोटा पौधा बाद गमा मुरझाना शुरू हो जाए या फिर बड़ा होने के बाद में जब वहाँ पर फड़ा तानी शुरू हुआ है तो फड़े जगह भी छोटा मोटा होने लग जाए या फिर बाकी जगह रंगत है बा कम होने लग जाए तो आ बातों को ध्यान रखना जरूरी है और आ चीज़ों को अगर आप पहले से ही इलाज कर ले तो बाद में फिर अपन ने कहीं भीतरी जगह अब खाई है वह कौन देखनी पड़ेगी। चंद भाई उससे शू बड़ी बात तो आ है कि अपन ने बाग लगाता टाइम अपन ने मिट्टी और पानी जल जो आप सिंचाई जल है बिंगी जाँच करवानी जरूरी है क्योंकि जगह फलदार पौधा लगाने से पहले अगर आप मिट्टी की जाँच करवा लें या फिर जांच करवाता टाइम आप इन बात को ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी जांच करवाने जाओ तो 3 फीट गहराई तक अपन ने माटी खोद के और भी माटी की अपन जांच जरूर करवानी है और सिंचाई के काम आने और जो पानी है आप बात करें जो नहर है कुओं है या फिर जगह अपन जोड़ा को या तालाब को जो पानी लेवा बिंगी भी जाँच करवानी जरूरी है और आप भी पानी ने अगर आप बागवानी में लगा सें तो भी कई तरह जगह फायदा है कई तरह जगह लाभ है भी अपने दिखाई देगा जो बात करें आप मिट्टी को जो कि जाँच परख है बिंगो एक तो अपन वर्गीकरण भी बिंगो हो जाए और इनके अलावा किसान भाइयों अपन फल वृक्ष खातर जब माटी जांच करवाओ तो अपन पता लग जाएगा अपनी खेती की जी मिट्टी है बिंग माज का उर्वरक है खाद है बंगी कितनी जरूरत पड़ेगी और बाद में फिर अपन जो पूरू खाद उर्वरक नखा बिंगो जो खर्चो पानी है वो भी अपन बचत हो जाए और इनके अलावा जो माटी जाँच करवा लें तो बीच में अपन मिट्टी का माजिया लवणता है क्षारियता है बिंग भी पहचान हो जाए और अपन मौका सर टेम सर

बिगो सुधार भी करने को टाइम मिल जावे। किसान भाई कई खेतों गमाजियाँ या किस कहाँ के कई बार हुआ है कि चूने की जिकी मात्रा ज़्यादा हुआ है, जिप्सम की जिकी मात्रा है वह ज़्यादा हुआ है, तो अपन ने माटी जांच कराता टेम ही बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी जिकी मिट्टी है, खेत की जिकी मिट्टी है, बिंग वहाँ जिप्सम की जिकी मात्रा है या फिर चूने की जिकी मात्रा है वह पूरी है या नहीं है, बिंगो भी अपन ने ध्यान रख गया अपन खाना पूर्ति है जिकी वह पूरी करनी पड़ेगी। इनके अलावा किसान भाई मिट्टी के नमूने की जाँच के सगे सगे अगर आप पानी के नमूने की भी जांच करवा लेवा तो ताकि अपन पतो लाया जाए कि पानी के जिकी गुणवत्ता है, पानी को जो खारोपन है या फिर स्वाद जो है वो किशोक है और अपन जिकी फसल बीजन ला रहे हाँ भी फसल का माफिक वो पानी है या नहीं है, तो अपन ये बातों को भी पतो लाया जाती है। वास्ते अपन ने टेम सर जागे जिकी प्रयोगशाला है नज़दीकी अपने जिकी प्रयोगशाला है बैठे जागे आप पानी की जिकी जाँच आवा करवा लेनी चाहिए। और बिया तो अपना कृषि वैज्ञानिक आ बात के वह कि जगह पोषक तत्व है बे अपने जगह पौधा है बंग बढ़वार खातर बंग जीवन चक्र जो को है वो पूरा हुए ये वास्ते जरूरी हुए। और आप जांच पर करवाता टाइम आप यहाँ पता लगे कि अगर थोड़ा बहुत कमी पूर्ति है तो देखो आपने बी चीज़ की भरपाई है जिकी आप टाइम सर कर सकें, क्योंकि अगर अपनी मिट्टी के अंदर या फिर अपने पानी के अंदर कहीं भी तरह कोई खामी है या फिर पोषक तत्वों की कमी है तो फिर बाद में जिकी कमी है बा पैदा होने वाली जी फसल है बिंगो उत्पादन पर भी बिंगो असर पड़ेगा। तो इन वास्ते जगह मुख्य पोषक तत्व है बंग है सागे सागे सूक्ष्म पोषक जगह तत्व है बंग भी जांच प्रक करते रहना जरूरी है, क्योंकि वे भी अपनी फसल का माँ बढ़वार के लिए या फिर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखे आपको। तो किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी का कई लक्षण हुए जो बात करें आप जो अपनी मिट्टी के अंदर जस्ते की कमी है तो इनका लक्षण की जब तक बात है तो पत्तियों की जिकी सिरावा है बंग जो को बीच को भाग है बिंग माँ हरी महीनता जकी है बिंगा लक्षण दिखाई देने लग जाए और पत्तियों को जो को रंग है वो मांस की तरिया दिखाई देने लग जाए और पत्तियों की नोक तो हरी रहे पत्तियां बिचाड़ों से टूटनी शुरू हो जाए, तो अपन समझ जाना चाहिए कि अपनी मिट्टी के अंदर जस्ते की कमी है। यही बात करें आप गंधक के बारे में माँ तो इंगी अगर आपने कमी दिखाई देवे तो इंगा भी कई तरह का लक्षण है जो नई पत्तियों को हरे रंग है वो खत्म होना शुरू हो जाए और पत्तियां की जिकी सिरा है वे पीले रंग की अपन दिखाई देने लग जाए और किसान भाई पत्तियां हैं जिकी ऊपर या नीचे या मुरेड़ी से दिखाई देने लग जाए और प्याला नुमा अपन ने दिखाई देने लग जाए यानी कि बंगो जो को आकार है या बाटी है बीतरियां बंगो दिखाई देने लग जाए। जे किसान भाई लो तत्व की कमी है तो इनका लक्षण की जब तक बात है तो इनमें नई पत्तियां में ऊपरी भाग पर सबसे पहला अपन ने हरी महीनता जिकी है यानी कि पीड़ोपन है वो अपन दिखाई देने लग जाए और सिरावान ने छोड़ के पत्तियों का जो रंग है एक सागे पीड़ो हो जाए और ज़्यादा अगर लो तत्व की कमी है तो पत्तियों के ऊपर भूरा रंग का धब्बा या फिर जो का मृत उत्तक का अपन के देवा बंग लक्षण अपने दिखाई देने लग जाए। ये मैंगनीज की बात है अगर अपनी फसल का माँ या फिर मिट्टी के अंदर मैंगनीज की कमी है तो पत्तियों का रंग है जो वो पीड़ो दिखाई देने लग जाएगा और धूसर या लाल हो जाए। तांबा की कमी होने के कारण किसान भाइयों नई पत्तियां एक सागे गहरा पीला रंग की हो जाए और सूख जाए और भी बाद मुरझा के झड़नी शुरू हो जाए। और किसान भाइयों बुरान तत्व एक इश्यू है जो को अपने वृद्धि करने वाला जो को भाग है बिना नीचे की जगह पत्तियां भी पीली हो जाए कलियां सफेद हो जाए हल्का भूरा जगह मृत उत्तक है भी अपने दिखाई देने लग जाए। कई बार ये हो किसान भाइयों की जो संतरा को बगीचो है बिंगमा जस्तो है नत्रजन है फॉस्फोरस है मैग्नीज है बुरान है आ तत्वों की अलग अलग तीव्रता की कमी अपने अलग अलग क्षेत्र का मां दिखाई देने लग जाए। बगीचा का मां नत्रजन फॉस्फोरस पोटासधारी उर्वरक है बंग ज़्यादा प्रयोग करने से मैग्नीजियम कॉपर जस्ते की भी कमी अपने दिखाई देने लग जाए। किसान भाई ज़्यादा बरसात होने की वजह से भी बगीचा का नत्रजन की जो को कमी है या फिर यहाँ केस कहाँ का है नत्रजन की जो की मात्रा है वह कम हो जाए तो टाइम टाइम पर अपने बगीचा का माँ जरूरत के हिसाब से जो का मुख्य सूक्ष्म तत्व है बंग 0.5% की दर से अपने पढ़नीय जो को छिड़काव है वो करते रहना चाहिए। और इनके अलावा जो की बागवानी है बिंग में हर साल आपने हर पौधे के माँ 10 किलोग्राम जो की गोबर की खाद है और 75 ग्राम जो की नत्रजन है और 50 ग्राम फॉस्फोरस है और इतनी ही आप पोटास को प्रयोग अपने करना चाहिए। तो आ बातों को ध्यान रख के किसान भाइयों आप बढ़िया तरीका से बागवानी कर सकें और बढ़िया फलत ले सकें। तो मैं अब खेत का निचालू सा राम राम सा राम राम।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कट से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस गर्मियों के मौसम में धूप से बचाव बहुत ज़रूरी है। इस गर्मियों के मौसम में लू से बचाव बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने जुलाई को पराबैंगनी सुरक्षा माह घोषित किया है। इसके लिए ये सुनिश्चित

सुनिश्चित करने के लिए एकदम अच्छा समय है कि आपके घर के सभी सदस्य अत्यधिक धूप के संपर्क में आने वाले खतरों से अवगत हों, खुद को सुरक्षित रखें। जब भी आप धूप में हों, कम से कम SPF 15 या SPF 30, SPF यानी सन प्रोटेक्शन फिल्म, SPF 15 या SPF 30 या उससे अधिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सनस्क्रीन को सही तरीके से लगाना सुनिश्चित करें। हर 2 घंटे धूप में रहने के लिए आपको लगभग 1 औंस यानी 30 ग्राम के आसपास सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अत्यधिक पसीना आने या तैरने के बाद इसे दोबारा लगाना ज़रूरी है, चाहे उत्पाद पर वाटरप्रूफ ही क्यों ना लिखा हो। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएं। उसके अलावा खुद को आप सूती कपड़े से भी बचा सकते हैं। हम जैसे राजस्थान में रहते हैं तो साफा या इस तरह का कोई और कपड़ा अपने चेहरे पर बांध करके, हाथों को ढक करके निकलना बहुत अच्छा है। इसके अलावा पानी की कमी शरीर में ना होने दें, यथासंभव पानी पिएं, लस्सी यदि उपलब्ध हो। और हमारे यहाँ तो राबड़ी का बड़ा चलन है राजस्थान में, और बड़े शौक से पीते भी हैं, बड़ा स्वादिष्ट पेय भी है और बहुत ही गुणकारी भी है, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखने की है, खाली पेट घर से नहीं निकलें। लू लगने का सबसे बड़ा कारण खाली पेट है, तो यथासंभव कुछ खा पी कर ही घर से निकलें और पानी की कमी शरीर में ना होने दें। बाकी मौसम है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, हर मौसम का अपना आनंद है, लेना चाहिए।

दोस्तों, भारत सरकार की ओर से एक विभिन्न प्रकार की योजनाएं बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें ना सिर्फ लोन की सुविधाएं हैं बल्कि उनके स्किल्स को देखते हुए उनके ट्रेनिंग की योजनाएं भी साथ में दी गई हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस संबंध में अधिक जानकारी आपको जिला रोजगार कार्यालय से मिल जाएगी और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी मिल जाएगी। ई मित्रा से संपर्क करके आप उस्ताद योजना में अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद लोन की व्यवस्था होगी और आप अपना रोजगार चला सकते हैं। दुनिया में पता नहीं क्या स्थिति कल को कैसी आ जाएगी, तो आपके पास अपना रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। तो बातें और भी करेंगे, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज का युग बदलते रिश्तों का युग अगर कहा जाए तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। व्यस्त जीवन शैली में आज रिश्ते अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। कई लोग अपने रिश्तेदारों से तभी मिलेंगे या फ़ोन करेंगे जब उन्हें कोई काम पड़ जाए। पहले रिश्तेदारों से मिलना, रिश्ते निभाना एक खूबी मानी जाती थी। मनुष्य जीवन रिश्तों से जुड़ा है। रिश्तों के कारण मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता पाने की, शिक्षित होने की कोशिश करने और फिर कार्य करने की इच्छा रखता है। हम जीवन में सफल भी होना चाहते हैं तो आमतौर पर अपने रिश्तों को निभाते रहने के लिए, रिश्तों में बराबरी कायम रखने के लिए

कुछ लोग जलाने के लिए भी सफल होना चाहते हैं रिश्तेदारों को। इसके पीछे उसकी अहंकार, उसका सोच, उसका व्यवहार जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। रिश्ते की अहमियत कोई माँ से पूछे जिसके लिए बच्चे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, किसी बहन से पूछे कि भाई का रिश्ता क्या होता है। लेकिन ये रिश्ते व्यस्त जीवन शैली में आते ही अपना अर्थ बदल क्यों लेते हैं? याद रखिए, रिश्ते तभी अच्छे और स्वस्थ बने रह सकते हैं जब अपेक्षाएं या इच्छाएं कम हों या नहीं हों, अन्यथा रिश्ते बदलने और दरार आने में देर नहीं लगती। आज के समय में सबसे बड़ा जो रिश्तों में दरार आने का कारण है वो मुझे लगता है धन है, पैसा है। खैर,

आशाएं कम हों या नहीं हों, अन्यथा रिश्ते बदलने और दरार आने में देर नहीं लगती। आज के समय में सबसे बड़ा जो रिश्तों में दरार आने का कारण है वो मुझे लगता है धन है, पैसा है। खैर, पैसे को अगर रिश्तों में ना आने दिया जाए, कहते हैं ना उधार प्रेम की कैंची है, रिश्तों में अगर पैसों को ना आने दिया जाए तो अपनों के रिश्ते बहुत अच्छे निभ सकते हैं, अपने तो अपने होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: एक जिद्दी पड़ोसी है,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली

0: की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
3: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति

0: सुस्ती में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर

0: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक

0: Tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपए महाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत दिफा मोबिलिटी बहरी सिक्योरिटी बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मेटरेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत प्रेस बयान मुफाहमत नामों का तबादला दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे जो खाने तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक

0: सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाई की है। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट, लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मरतबा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने डीजीसीए के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे वीटीएनएक्स को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में आईआईएमसी हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं।
1: उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कानात और हमारे मुल्क में ग़िज़ाई सिक्योरिटी, माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने बहरे

0: हिंद बहरुलकाहिल खित्ते में अमन इस्तेहकाम सलामती और समंदरी रास्तों की आज़ादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कुछ भजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 1 एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के SP बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का IG बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के SP बदले गए हैं। ADG लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं ADG हवा से

0: घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं के प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तम्बाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तम्बाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तम्बाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिन

0: स्पिनर बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मुरमंगल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे बैरागनाथ के गाए कुछ लोकगीत।

मुरमंगल कार्यक्रम में आज आपने लोक गायक बैरागनाथ के गए कुछ लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: प्रेम प्रतिज्ञा, आइए इस फिल्म से किशोर कुमार को सुने। गीत इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम।
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को संतोष आनंद के लिखे गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: फिल्म दीवार से सुनिए आशा भोंसले और किशोर कुमार को। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, सुरों से सजाया है RD बर्मन ने।
5: तुम्हें
6: हाँ
5: क्या चुप रहूं
6: ना,
5: दिल में मेरे आज क्या है?
6: क्या है?

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आइए अब सुनते हैं इंदिवर का लिखा गीत, कल्याण जयानंद जी का संगीत, स्वर किशोर कुमार और सपना मुखर्जी के फिल्म का नाम जानबाज़।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। सुनते हैं फिल्म जानबाज का गीत। सुनते हैं फिल्म जन्नत का गीत, लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का और स्वर के।

0: चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कब तक चुप रहूंगी। आइए इस फिल्म से मोहम्मद अजीज और साथियों को सुने गीत समीर का, संगीत बप्पी लहरी का।

फिल्म होटल का गीत सुनिए। स्वर हैं मनोहर दास और आशा भोंसले के।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: फिल्म कुर्बान का गीत सुनिए, सुखविंदर सिंह के स्वरों में, गीत समीर का और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदमी खिलौना है। आइए अलका याग्निक और पंकज उधास को सुने गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म अर्पण से सुनिए। लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों को गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म शराबी का गीत, किशोर कुमार के स्वरों में, गीत प्रकाश मेहर का और संगीत बप्पी लहरी का।

अभी आपने प्रोग्राम सुना सुहाना सफ़र। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, पेश है प्रोग्राम सैनिकों के लिए।

संगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। गीत के बोल हसरत जयपुरी के थे और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है ओपी नैयर ने और फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, जिसकी धुन मदन मोहन ने तैयार की थी। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और इस गीत को हमने पूजा के फूल फिल्म से लिया था। श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। मधुमति, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत सलील चौधरी का।

0: श्रोताओं, एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत सुना। फिल्म थी तीन देवियां और इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज, गीत एस एच बिहारी का है, संगीत ओपी नैयर का और फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।
1: बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में, हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें

अमरदीप फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार की थी सी रामचंद्र ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश हसरत जयपुरी का गीत, एसटी बर्मन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और फिल्म है

ये आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा था साहिर ने, संगीत तैयार किया था मदन मोहन ने और फिल्म थी गज़ल। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं नीरज का लिखा यह गीत। संगीत सचिन देव बर्मन ने तैयार किया है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम है गैम्बलर।

असली नकली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल हसरत के थे और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुनिए। संगीत रोशन का, आवाज़ लता मंगेशकर की, और इस गीत को हमने फिल्म ममता से लिया है।

वक्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी आशा भोसले की, गीत को लिखा था साहिर ने और धुन तैयार की थी रवि ने। लीजिए लता मंगेशकर को सुनिए, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का, और फिल्म है आरजू।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय होगा ग्वार की उन्नत खेती कैसे करें। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे प्रसन्नता अपनों से बात करने में। सैर करें ऊटी हिल स्टेशन की, मौसमी फल आड़ू, साथ ही एक वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा आधुनिक समय में शिक्षा और वार्ताकार होंगी मनीला सचदेवा। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी पसंद, साथ ही एक वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत, वार्ताकार होंगे अंतरिक्ष शर्मा। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण व 6:05 पर सिराई के प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज आप ईमेल्स और पत्रों पर आधारित पत्रोत्तर सुनेंगे, साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। 7:45 पर फिल्म संगीत होगा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आप सुन पाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत होगा। 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात्रि 10 बजे टेलीफोन कॉल्स पर आधारित प्रोग्राम हेलो मन भवन प्रसारित किया जाएगा। आज प्रस्तोता होंगे विकास पारिक और कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता होंगे नवीन सिसोदिया। ये था कार्यक्रम विवरण।

0: जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
0: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन शेखावत का नमस्कार। साथियों, कहा गया है कि अब कोई

इम्तिहान है ही नहीं, दूर तक आसमान है ही नहीं, मेरी गज़लों के साथ चलते रहो, इस सफ़र में थकान है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सफ़र में थकान तब महसूस नहीं होती जब कोई अपना हमारे साथ मंजिलों की तरफ बढ़ रहा हो। हर नाउम्मीदी उस वक्त उम्मीद बन जाती है।

श्रोताओं, मौसम ऋतुएं बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ लम्हे खुद ब खुद ख़ास बन जाते हैं, क्योंकि वो वक्त अपने साथ कुछ नए एहसास लेकर आता है। हम उन्हें ताउम्र नहीं भूल पाते।

जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ मगर सफर तन्हा। ओशो तो इस तन्हा सफर में अगर कोई ऐसा हमसफर मिल जाए जो बिन कहे सब समझ जाए, तो यकीन जानिए चांद भी कदमों में आ जाता है।

साथियों, कहा गया है कि धूप का रंग भरा है मुसव्विर ने शायद, धूप का रंग भरा है मुसव्विर ने शायद, अंधेरे में भी तेरी तस्वीर नजर आती है। और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ क्या अंधेरा क्या उजाला। कोई शख्स हर वक्त आपके आसपास रहता है और उसकी तुलना जब तस्वीर से की जाती है तो बकौल साहिर बात यही आती है कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं।

मैं पागल मन का प्यार और तुम राजा रूपनगर के, हम दूर दूर चलकर भी दोनों पंथी एक टगर के। और श्रोताओ, यही दूर रहना दिल को कभी कभी बहुत अकरने लगता है।

श्रोताओं, कहा गया है कि साहिलों पर उदासी रही, साहिलों पर उदासी रही, एक नदी फिर से प्यासी रही, जिसमें मंदिर हुआ सो हुआ, रूह तो देवदासी रही। यही उदासी, यही बेख्याली ही तो मोहब्बत का हासिल है।

कभी ख्याल की खुशबू, कभी बदन की महक, हर एक लम्हा हमारे ये चार सुखिया है। सुमन को इजाज़त दीजिए।

अभी आपने कार्यक्रम सुना कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने राणा सहरी की ये गज़ल सुनी, और लीजिए फिराक गोरखपुरी का कलाम सुनिए। आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने कतील शफाई का ये कलाम सुना। सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की ये गज़ल।

0: चित्रा सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज जानकारी का विषय है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा किए गए पानी को ज़्यादा उपयोग करके खेती में सिंचाई करी जावे। सिंचाई पद्धति के द्वारा बूंटांगी वास्तविक पानी की मांग अनुसार पानी की सही मात्रा बूंद बूंद के रूप में पौधे की जड़ा में दी जाए और जरूरी होने पर घुलनशील पोषक तत्व और रासायनिक खाद पानी में घोल के समान मात्रा में बूंटे की जड़ा तय पुगाई जाए। इन सिंचाई पद्धति में किए गए पानी ने बुंटे की जड़ा ताई ड्रिपर्स माइक्रोस्प्रिंकलर माइक्रोस्पेयर आदि इमिशन डिवाइस यानी कि उत्सर्जक युक्ति द्वारा भूमिगत पाइप के द्वारा बुंटे की जड़ा के पुगाई जाए। आ सिंचाई पद्धति किसान भाइयों मुख्य तौरों फल बागान और कतार में बोई जाने वाली सब्जियां और गन्ने की

सिंचाई में ज्यादा उपयोगी पाई गई है। बात करें किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों फसलों की उपज वृद्धि और पानी की बचत की, तो अंगूर की फसल में 60-70% तक पानी की बचत हो और उपज की जी की वृद्धि है वह 30% तक रेवे। अनार की फसल में 50-55% तक पानी की बचत और 30% उपज में वृद्धि हुए। अमरूद की बात करा तो इन फसल में 55-60% तक पानी की बचत और 25% उपज की वृद्धि हुए। नींबू की बात करा तो इनमें 81% तक पानी की बचत और 35% तक के उपज में वृद्धि हुए। टमाटर की बात करा तो 30-79% तक पानी की बचत रेवे और 5-43% उपज में वृद्धि हुए। बैंगन की बात करा तो इंगमा 55-80% तक पानी की बचत, 17-5% तक उपज वृद्धि हुए। आलू की बात करा तो इंगमा 46% तक उपज वृद्धि रेवे। बात करा किसान भाइयों पत्ता गोभी की तो इंगमा 39-60% तक पानी की बचत और 23-4% तक उपज की वृद्धि हुए। और किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों भिंडी में 49-84% तक पानी की बचत और 7-13% तक उपज में वृद्धि हुए। अब बात करें किसान भाइयों के बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का मोटा मोटा लाभ किए है, तो किसान भाइयों औसतन 30-35% तक पानी की बचत हुए और इंगमा किया गया बचेड़े पानी 30-35% ज्यादा माटी में अपना सिंचाई कर सका। और किसान भाइयों औसतन 10-20% तक उपज में वृद्धि होने सागे सागे फसल की जगह गुणवत्ता है बिंगमा भी किए सुधार हुए। पार्टिगेशन के द्वारा किए गए उर्वरक और घुलनशील पोषक तत्वन गो आपा समुचित उपयोग कर सका। सागे सागे किए किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों खरपतवार पर भी नियंत्रण रेवे, क्योंकि पानी की जगह बूंदा है बस सीधी बुंटे की जड़ा तय जावे तो आस पास पानी को फैलाव को रहे यूं किए गए खरपतवार पैदा ही को नहीं हुए। और सागे किसान भाइयों जिसकी उबड़ खाबड़ की जमीन है यानी कि ऊंची नीची जमीन है और क्षारीय जमीन है बिंगमा भी किए का बहुत ही उपयोगी साबित हुई है और सागे अगेती फसल प्राप्ति में भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बहुत ही सहायक है। सागे अपना टाइम की बचत हुए, क्यों आप तो मशीन चला गए और सारा में बाग में या फसला में कट्ठो पानी आप लगा सका, इन खातर किया ज़्यादा आदमियों की जरूरत भी कौन पड़े और खारे पानी में भी यह किए गए कारगर साबित हुई है। और सागे किया गया अपनी ऊर्जा की बचत रहे, बूंद बूंद सिंचाई माटी में नमी और उर्वरकता जिकी है वह किसान भाइयों बनी रहे। और किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपने खेत में लगाने खातर सरकार अनुदान भी जारी करे और इन खातर आवेदन पत्र के सागे जरूरी कागज जिया जमा मंदी है, पासबुक, खसरा गिरदावरी और खेत का स्वामित्व का जगह दस्तावेज है, सागी नोट ड्यूज प्रमाण पत्र और खेत के नक्शे की प्रति और जो को अपना उद्देश्य है बिंगो अनुमान पत्र आदि संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में या फिर ई मित्र के माध्यम अपने प्रस्तुत कर देना चाहिए। और किसान भाइयों उद्यान विभाग कृषि विभाग के अधिकारियों अनुदान की जानकारी बाबत अपने के टेमो टेम संपर्क करना चाहिए और सागे कृषि पर्यवेक्षक है वह भी आप किए जानकारी प्राप्त कर सका और कृषि विभाग की वेबसाइट है बी पर भी आप जानकारी लेस। अब बात करें किसान भाइयों फुहारा सिंचाई पद्धति की, तो फुहारा सिंचाई पद्धति एक इसी सिंचाई पद्धति है जिसके द्वारा पानी ने हवा में छिड़काव करो जावे और वो पानी जमीन पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरे। पानी को छिड़काव दबाव द्वारा छोटी नोजल या ओरिफिस द्वारा करो जावे। इनमें किया गया न तो पानी को जमा हुए और न ही माटी यूं दबे और यूं जमीन और हवा को सही अनुपात बने रहे और बीजा को अंकुरण भी जल्दी हुए। किसान भाइयों फुहारा पद्धति में पानी की 30-35% तक बचत हो जावे और आविधि बलुई माटी ऊंची नीची जमीन और जटे पानी कम मात्रा में उपलब्ध हुए बठा उपयोग करी जावे। इन विधि के द्वारा किए गए कणक, कपास, मूंगफली और कई दूसरी फसला में सिंचाई किसान भाई कर सके। फुहारा सिंचाई पद्धति के लाभ की बात करा तो सिंचाई का परंपरागत तरीका के मुकाबले इन पद्धतियों सिंचाई करने पर मात्र 50-70% पानी की आवश्यकता हुए। फुहारा पद्धतियों जमीन ने समतल करने की जरूरत को नहीं हुए और ऊंची नीची जगह वाला जगह भूभाग है बंग में भी यह पद्धति कारगर साबित हुई है। फुहारा पद्धतियों सही टाइम पर जुताई और पौध रोपाई को कार्य भी किसान भाई कर सके। किसान भाइयों अब बात करा सोलर पंप की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और फुहारा सिंचाई पद्धतियों भी आप जोड़ सका। किसान भाइयों पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को निरंतर दोहन और पर्यावरण पर इंग उपयोग होने वाला जिसका दुष्प्रभाव है वह बचाव खातर सौर ऊर्जाओं बिजली पैदा करके खेती और बागवानी में सोलर पंपों सिंचाई किसान भाई करण लाग रहे हैं जिसको कम खर्च करके किसानों के आय में वृद्धि होने लाग रही है। सोलर पंप के उपयोग न केवल डीजल और बिजली की बचत हुए बल्कि सोलर पंप के सागे सागे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और फुहारा प्रणाली ने जोड़न

करोड़ों घन मीटर पानी की बचत भी होने लाग रही है और बचेड़े पानी ने सिंचाई पानी के अलावा अतिरिक्त माटी में अपा सिंचाई कर सका। सोलर पंप की तकनीकी सफलता और टिकाऊपन निश्चित करने खातर किए गए इन्हें अति आधुनिक खेती और उद्यानिकी गतिविधियों का सागे सागे पानी संचय और संरक्षण तकनीक सागे भी जोड़े जाने लग रही है और इन अलावा सोलर पंप उद्यान सेडनेट हाउस पॉली हाउस डिग्गी पानी होज खेत तलाई जल संग्रहण ढांचों और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के सागे प्रभावी रूप में किसान भाइयों जोड़े गए है। और सोलर पंप में सूरज की किरणा सीधी बिजली या ऊर्जा बनाने को काम सोलर पैनल द्वारा करो जावे इन सागे एसी या डीसी मोटर लगड़ी हुए जकी किया है सौर ऊर्जाओं पानी खींचने को काम करे। सोलर पैनल दिन रात पूरी कुशलता के सागे काम कर सके इन खातर किया है कि पैनल तक सूरज की किरणा हमेशा सीधी पुगनी चाहिए और जमीन पर लगन वाला यानी सरफेस और पानी अंदर काम करने वाला सबमर्सिबल पंप ए लगभग 250 फीट की गहराइयों भी पानी उठा सके और एक दिन में लगभग 1,00,000 लीटर तक पानी खींच सके। सोलर पैनल पर इंगो मॉडल नंबर

0: पॉली हाउस, डिग्गी, पानी होज, खेत तलाई, जल संग्रहण ढांचो और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना का सगे प्रभावी रूप में किसान भाइयों जोड़ो गयो है। और सोलर पंप में सूरज की किरणा सीधी बिजली या ऊर्जा बनाने को काम सोलर पैनल द्वारा करो जावे। इंगे सागे एसी या डीसी मोटर लगेड़ी हुए जकी क्या है कि सौर ऊर्जाओं पानी खींचने को काम करे। सोलर पैनल दिन रात पूरी कुशलता के सागे काम कर सके। इन खातर किया कि पैनल तक सूरज की किरणा हमेशा सीधी पुगनी चाहिए और जमीन पर लागन वाला यानी सरफेस और पानी अंदर काम करने वाला सबमर्सिबल पंप ए लगभग 250 फीट की गहराइयों भी पानी उठा सके और एक दिन में लगभग 1,00,000 लीटर तक पानी खींच सके। हाँ, सोलर पैनल पर इंगो मॉडल नंबर, क्रम संख्या, कंपनी का नाम, उत्पादन की तारीख आदि सूचनाएं अंकित रहे। जकों किए गए इंग मां की भी प्रकार की छेड़खानी कौन कर सके कोई। और सौर ऊर्जा पैनल ने लगाते टाइम एंटी थेफ्ट नेट को इस्तेमाल करो जावे। जकों किया गया इन पर लगाया गया नट बोल्ट ने खोलो कौन जा सके और इन उपायों किया गया सोलर पंप ने जरूरी सुरक्षा जकी है बा प्रदान करेड़ी है। अब बात करें किसान भाइयों सोलर पंप का फायदा की, तो सोलर ऊर्जा पंप को सारो मोटो फायदा वही है कि इंग मां लगाने के बाद किसान भाइयों ने ऊर्जा का महंगा स्रोता पर निर्भर को रहना पड़े और इन माध्यमों किया गया दूर दराज के क्षेत्र में इन्हें लगा गए फसल में पानी आप उगा सका और पानी के बहाव ने नियंत्रित कर सका और सोलर पंप के इस्तेमाल में किसान भाई ऊर्जा खपत के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे। और सोलर पंप सूरज की किरणों उत्पन्न ऊर्जाओं चलाया जावे जकों कह बिजली और ईंधन चलन वाला ऊर्जा स्रोता पर किसान भाइयों की निर्भरता ने किएगा कम कर दी है। इन्हें चलान में धन की भारी बचत हुए और किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि हुए और सोलर पंपों के इन्हें ऑपरेट करना बहुत ही आसान हुआ और इनमें बहुत ही कम कल पुर्जा लागेड़ा हुआ है। इनके अलावा इनमें बिजली चलने वाला पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरह बिजली कटौती, कम वोल्टेज, बिजली के बिल भर की कोई समस्या कौन रहे। और किसान भाइयों सोलर पंप दूसरा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरह ध्वनि और वायु प्रदूषण कौन करे क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल हुए और क्योंकि यह किसे भी इसे ईंधन पर कौन चला जकों के प्रदूषण की वजह बनता हुआ है। सोलर पंप के माध्यम किए के कोई भी हानिकारक पदार्थ को निकले जो को पर्यावरण नुकसान पुगावे और बठई पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण खातर किए घातक हुए और वह सोलर पंप किसान भाइयों खातर किए बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरियो है। इंगला किसान भाइयों सोलर पंप को इस्तेमाल की प्रकार को न्यारो खर्चों को नहीं आवे और रख रखाव भी बहुत ही कम हुआ और इसे में किसान भाई सोलर पंप ने आप गए उपयोग के बाद बचड़ी सौर ऊर्जा ने ग्रिड में बेच भी इसके और इन खातर किया लागत के हिसाब में काफ़ी किफायती रहे। तो किसान भाइयों आज को टाइम ही तो ही देव आ गया। राम राम सा, राम राम।
1: बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कार्यक्रम खेत खलिहान में अभी आपने इस विषय पर ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

और अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री के

0: केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। दो पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एआई होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

जो बस पुरानी राहों पर चलता जाता है, जो बस पुरानी राहों पर चलता जाता है, वक्त की आंधियों में अक्सर खो जाता है। सीखो बदलना मौसम के इशारों के साथ, वरना इंसान लकीर का फकीर कहलाता है। नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत और मैं हूं आपकी सखी अलका वर्मा। आज लेकर आई हूं एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी और सीख भी, जो हमें बताती है कि केवल पुरानी लकीरों पर चलते रहना ही समझदारी नहीं होती है। समय के साथ जो है वो बदलना भी बहुत ज़रूरी है।

सखियो, लकीर का फकीर जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बिना सोचे समझे केवल पुराने नियमों और तरीकों पर ही चलता रहता है। चाहे समय कितना ही बदल जाए, परिस्थितियां भी बदल जाएं, लेकिन वो जो है वो अपनी सोच को नहीं बदलता है। तो ऐसे ही आज की कहानी जो है वो राजस्थान के एक छोटे से गांव के किसान की है। उसका नाम है रामलाल। जो रामलाल है वो वर्षों से खेती कर रहे हैं। उनके पिताजी और दादाजी भी जो थे वो खेती ही करते थे, और उनके दादाजी और पिताजी जिस तरीके से वो खेती करते थे वही जो तरीका है वो रामलाल भी आज अपना रहे हैं। तो गांव के जो दूसरे किसान हैं वो तो नई तकनीक अपनाने लग गए हैं, जैसे ड्रिप की सिंचाई, उन्नत बीज, मौसम की जानकारी मोबाइल से ले लेना, और खेती करने के तरीकों में बदलाव, जो आजकल ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो रामलाल है ना वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने तो जो किया है ना वही सही है, नई चीज़ों में ना कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि सोच अगर पुरानी जंजीरों में कैद रहे ना तो तरक्की के सारे रास्ते बंद रह जाते हैं। जो बदलते वक्त के साथ कदम मिलाता है वही जीवन में आगे बढ़ जाता है। सो क्यों कहानी में आगे क्या हुआ, तरक्की के रास्ते रामलाल के कैसे बंद हुए, इस पर चर्चा करेंगे इस गीत के बाद। फिल्म का नाम है तो रास्ते, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

हाँ तो सखियों, हम बात कर रही थी आज के कार्यक्रम में रामलाल की, कि कैसे वो जो है अपने दादा परदादा की जो है पुरानी तकनीक से ही खेती कर रहे थे। तो एक साल क्या हुआ कि गांव में बहुत कम बारिश हुई। अब जिन किसानों ने नई तकनीक अपनाई थी ना, उनकी फसल तो किसी तरह बच गई, लेकिन जो रामलाल था ना, उसकी पूरी फसल जो है वो बिल्कुल सूख गई। रामलाल बहुत परेशान हो गया। तो उसके बेटे का नाम मोहन था। तो मोहन ने अपने पिता को समझाया कि बाबूजी, परंपरा अच्छी है, लेकिन समय के साथ जो है वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो रामलाल ने पहले बार अपने बेटे की जो है वो बात मानी, और उसने कृषि अधिकारी से सलाह ली, नई तकनीक सीखी और अगली बारी अच्छी फसल पैदा की। तो अब रामलाल जो है वो गांव वालों से कहता कि सिर्फ पुरानी लकीर पकड़ कर चलना ठीक नहीं, समय के साथ सीखना और बदलना ही जो है वो समझदारी होती है। तो कहते हैं ना कि नया सवेरा नई सोच लेकर आता है, और हर दिन इंसान को कुछ नया सिखाता है। जो बदल जाए हालात के अनुसार, वही जीवन में असली जीत पाता है। और सखियां, जीवन में अनुभव जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधी परंपरा नहीं। अगर हम बिना सोचे हर पुरानी बात जो है वो मानते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नई शिक्षा, नई तकनीक और नई सोच अपनाना जो है वो समय की मांग है। तो चलिए, नई राह पर कुछ नया कर दिखाएं, पुरानी गलतियों से सबक सीख जाएं। वक्त कहता है बदलो अपने अंदाज को, तभी जीवन में खिलेंगे सफलता के साथ। तो सखियो, यही सीख देती है आज की कहानी। लकीर का फकीर मत बनिए, समय के साथ सीखिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ सुनवाते हैं अगला गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, और फिल्म का नाम है गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: रिश्तों की मिठास, अपनों का साथ और दिल की बात, यही तो ज़िंदगी की असली दौलत है। कभी कभी खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने लोगों से दो पल बात करने में छुपी होती हैं। घर में खुशियों का उजाला तब खास होता है जब अपनों की बातों में अपनापन पास होता है। दौलत से नहीं मिलती दिल की सच्ची राहत, अपने जब पूछ लें हाल, वही सबसे बड़ी चाहत। जी हाँ सखियों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं बचता। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन कई बार अपने ही घरों से लोगों को जो है वो दूर कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपने माता पिता, भाई बहन,

दादा दादी या दोस्तों से खुलकर बात करते हैं तो मन कितना हल्का और प्रसन्न हो जाता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अपनों से बातचीत करने में तनाव जो है वो कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आती है। जब कोई अपना हमारी बात सुनता है, हमारी परेशानियों को समझता है, तब दिल को जो है वो बड़ा सुकून मिलता है। गांवों की चौपाल हो, घर का आंगन हो या शाम की चाय, पहले लोग घंटों बैठकर बातें किया करते थे और इसी कारण रिश्तों में मिठास और दिलों में अपनापन जो है वो बना रहता था। आज की ज़रूरत है कि हम फिर से उन पलों को वापस लेकर आएं। थोड़ा वक्त अपनों के नाम किया करो, दिल की बातें खुलकर बयान किया करो। थोड़ा वक्त अपनों के नाम किया करो, दिल की बातें खुलकर बयान किया करो। रिश्ते खुद ब खुद महक उठेंगे एक दिन, बस प्यार से हाल चाल जान लिया करो। सखियो, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग अपने परिवार और मित्रों से जुड़े रहते हैं वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। बच्चों के साथ बातचीत करने से बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, और वहीं अगर बुज़ुर्गों की बात करें ना तो उन्हें अपनापन और सम्मान महसूस होता है। कई बार एक छोटी सी बातचीत किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। इसीलिए दिन में जो कुछ समय है वो अपने लोगों के लिए हमें ज़रूर निकालना चाहिए। फ़ोन करें, हालचाल पूछें, साथ बैठें और दिल से बातें करें, क्योंकि रिश्तों की डोर बड़ी अनमोल होती है। अपनों की बातें ही दिल का मोल होती है। जो समय अपने संग हंसकर बिताया जाए वही ज़िंदगी की सबसे सुंदर पोल होती है। तो याद रखिए, खुशी महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में छुपी होती है। अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनों से खुलकर बात कीजिए और ज़िंदगी को खुशियों से भर दीजिए। और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम महिला जगत। वक्त हो चला है अगले गीत का। फिल्म है ललकार, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

क्यों गर्मियों की छुट्टियां जो है वो हो गई हैं बच्चों की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही दक्षिण भारत के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर पर, जिसका नाम है ऊटी, और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। बादलों की चादर, ठंडी हवाओं का प्यार, ऊटी की वादियों में बसता है सुकून अपार, जहाँ हर नज़ारा दिल को भा जाता है, प्रकृति का जादू हर चेहरे पर मुस्कान लाता है। जी हाँ सखियों, ऊटी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में बसा एक सुंदर पर्यटन स्थल है। चारों ओर हरियाली, चाय के बागान, ऊंचे पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन जो है वो मोह लेती हैं। ऊटी का जो पूरा नाम है उधम मंडलम है, और यह राजस्थान जो है अंग्रेजों के समय से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहावना रहता है। गर्मियों में लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने आते हैं, जबकि सर्दियों में ठंडी हवाएं और कोहरा वातावरण को और भी खूबसूरत जो है वो बना देता है। जहाँ पहाड़ों से बादल बातें करते हैं, झील के किनारे सपने सजते हैं, ऊटी की हर राह कहती है मुस्कुरा कर, यहाँ प्रकृति के रंग दिल में उतरते हैं। तो क्यों ऊटी की खास जगहों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं ये गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है चरस।

सखियों, हम आज के कार्यक्रम में सैर कर रही हैं ऊटी की। तो ऊटी की सबसे खास जगहों में जो है शामिल है ऊटी लेक। ये जो है वो कृत्रिम झील पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं और आसपास की सुंदरता का भी लुत्फ़ जो है वो उठाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन भी बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ रंग बिरंगे फूल और बहुत सारे पौधे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो डोबाटा पीक जरूर जाइए। यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ से पूरा शहर जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऊटी की पहचान यहाँ के चाय बागानों से भी है। दूर दूर तक फैली हरियाली और चाय की खुशबू जो है यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ का मशहूर नीलगिरी चाय देश विदेश में बहुत ही फेमस है। ऊटी पहुँचने के लिए सखियों सड़क, रेल और हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। सबसे नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ ऊटी की टॉय ट्रेन भी चलती है। यह ट्रेन पहाड़ों और सुरंगों के बीच से गुजरती है और अद्भुत दृश्य जो हैं वो हमें दिखाती हैं। तो चलो कहीं सुकून की राहों में खो जाएं, कहीं सुकून की राहों में खो जाएं, पहाड़ों की गोद में कुछ पल बिताएं। ऊटी की वादियां पुकारती हैं प्यार से, आओ प्रकृति के संग मुस्कुराएं। तो सखियों, आप भी प्रकृति, शांति और सुंदर नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार ऊटी की सैर जरूर कीजिए और साथ ही आनंद लीजिए। कार्यक्रम के अगले गीत का, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आप भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: क्यों कार्यक्रम में आगे हम बात करते हैं एक ऐसे स्वादिष्ट और रसीले मौसमी फल की, जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आड़ू की। आड़ू यानी कि पीच। आड़ू जो है वो गर्मियों और बरसात के मौसम में मिलने वाला लोकप्रिय फल है। ये जो है देखने में सुंदर, स्वाद में मीठा और पोषक तत्वों से जो है वो भरपूर होता है। आड़ू में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं। बात करें आड़ू के स्वास्थ्य लाभ की, तो सबसे पहले जो है ये पाचन को बेहतर बनाता है। आड़ू में फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे पेट जो है वो साफ रहता है, कब्ज़ की समस्या कम होती है।

और साथ ही साथ ये जो है वो त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। इसमें जो है विटामिन सी होता है जो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ आड़ू जो है वो शरीर को ठंडक देता है। गर्मियों में इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा देता है। क्यों आड़ू दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो है वजन को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें जो है कैलोरीज कम और पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों को जो है इसका सेवन करना चाहिए। अगर इसे खाने का तरीका बताएं तो इसे सीधे भी फल के रूप में खाया जा सकता है। इसके अलावा इसका शेक बनाकर, जूस बनाकर, जैम, सलाद या मिठाइयों में भी इसका जो है प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ताजे और साफ फलों को ही लें। मौसम के अनुसार फल खाना जो है वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फास्ट फूड की जगह अगर हम ताज़े फल अपनाएं तो शरीर जो है वो स्वस्थ और मन जो है वो प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि सेहत का राज प्रकृति में छुपा होता है और हर फल जीवन का नगीना होता है। तो सखियो आड़ू जैसा फल जो है वो रोज़ अपनाएं, स्वस्थ जीवन का आनंद पाएं। आज ही अपने भोजन में स्वादिष्ट और पौष्टिक आड़ू को शामिल कीजिए और स्वस्थ जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाइए। और सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को कार्यक्रम के अगले गीत में। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स्ड डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्यों गर्मी के मौसम में ना हमें अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर जो है वो खान पान का। हमें ऐसी चीज़ों का जो है सेवन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर ठंडा रहे, पानी की कमी ना रहे, और इस मौसम में जरा सी भी लापरवाही जो है वो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक जो है साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए तरबूज को, क्योंकि इसमें 70% पानी होता है। पानी के साथ साथ इसमें विटामिन सी ए और मैग्नीशियम भी होता है। इसमें कैलोरीज की मात्रा भी कम होती है, इसीलिए इसे खाने से वजन नहीं बढ़ता है और पेट भी जो है वो भरा भरा ही रहता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनका खतरा जो है वो कम हो जाता है। गर्मियों में खीरा भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है जो कब्ज़ की समस्या से राहत दिलाता है। पानी की मात्रा अधिक होती है इसमें, जिससे इसे खाने से शरीर में पानी की कमी जो है वो भी नहीं हो पाती है। कीवी का खट्टा मीठा स्वाद ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। इसमें जो है विटामिन बी, B2, B3 और विटामिन सी की जो है मात्रा होती है। इसमें इससे जो है हृदय, दांत और किडनी और ब्रेन जो है वो अच्छा रहता है। दही में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मिनरल्स की मात्रा भरपूर होती है। ये हड्डियों के लिए अच्छा होता है। 250 ग्राम दही में 75% पानी होता है, साथ ही साथ प्रोटीन की भी मात्रा जो है वो भरपूर होती है। शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए नारियल पानी और छाछ से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। छाछ में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन के साथ साथ पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वहीं नारियल पानी में कैल्शियम, क्लोराइड और पोटेशियम की मात्रा जो है काफ़ी होती है। सो इस समय जो है मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो रहा है, बाहर तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा बाहर ना निकलें। घर से निकलने से पहले अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह या शाम ही अपने घर से बाहर निकलें, तेज़ धूप में बाहर ना निकलें। लू से अपना ध्यान रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम महिला जगत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, जुगल किशोर का संगीत है, MG हसरत ने इस गीत को लिखा है और फिल्म का नाम है भीगी पलकें।

तो क्यों चलते चलते कुछ किचन टिप्स आपसे साझा कर लिए जाएं। तो किसी भी बर्तन के जलने पर यदि साफ़ नहीं हो रहा है तो उसमें चाय की पत्ती और पानी डालकर कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें। इसके बाद बर्तन साफ़ करें तो वो साफ़ हो जाएगा। दालों को कीड़े से बचाने के लिए दालों को रखते समय जार में कुछ बूंदे कैस्टर ऑयल की डाल दें। ऐसा करने से दालें जो हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित जो हैं वो रहेंगी। यदि आप किचन में होने वाली चींटियों से परेशान हैं तो किचन में CFL लगा दीजिए। दो प्याज बांध कर लटका दे। ऐसा करने से चींटियां जो है वो कम हो जाएंगी। यदि फ्रिज में बदबू आ रही है तो इसे दूर करने के लिए एक नींबू को दो भागों में काट कर फ्रिज की ट्रे में रख दे। बदबू जो है वो गायब हो जाएगी। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

सो क्या उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आपने कार्यक्रम सुना महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration, and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से

0: सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा

0: किस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
1: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
3: अरे चुपके से दिल दे दे।
4: नहीं ते
3: नहीं ते

0: मर्यादा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और लीजिए अब किशोर कुमार के साथ लीना चंद्रावरकर को सुनिए, फिल्म है मंजली।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी

श्रोताओं, इस समय आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आराधना फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म थी रोटी। और लीजिए अब प्रेम कहानी फिल्म का गीत सुनिए। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और आवाज़ें एक बार फिर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अनामिका फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और प्रोग्राम के आखिर में फिल्म अभिनेत्री से ये गीत सुनिए, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की है।

सजना सजना ओ सजना।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

0: अंडमान निकोबार जजायर में कल तक शदीद बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, लक्षद्वीप में आइंदा दो रोज़ के लिए गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब और हरियाणा में शदीद गर्मी जारी है और दोनों रियासतों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 40 और 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह रहा है। मौसमियात महकमे ने पहले ही खित्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वाक़ मौसमियात के महकमे के डायरेक्टर सुंदरपाल ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा और आइंदा 3 से 4 दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। दोनों रियासतों के मगरबी अजला में गर्मी में और तेजी आ सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब के फरीदकोट में दर्जा हरारत 47.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रोहतक में दर्जा हरारत 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 93 रन की इनिंग्स की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत इटली इक़्तिसादी इश्तराक को फ़रोग देने के लिए आज रोम में इटली के अपने हमनसब जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकत दारी के लिए आइंदा का लाहे अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरक मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक़्तिसादी इक़दाम को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिज़ाइल V3 का कामयाब तजर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और मुल्क के शमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: आशिक हूँ।
1: मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत अभी आपने रूप कुमार राठौर को सुना, फिल्म थी गुमराह। इससे पहले आपने सुना आशा भोसले को, फिल्म थी जिंदगी एक जुआ। इन दोनों नगमों के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी से ही आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनिए जनाब जावेद उर्फी का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है शादी का इश्तेहार। पेशकश सरफराज अहमद की है और हिस्सा लेने वाले फनकार हैं चांद नारायण सक्सेना, शारदा गुप्ता, मोहम्मद अयूब, पोर्शिया मुखर्जी और कमला कुमारी चोपड़ा।

0: कोई साहब है दिव्या, क्या कोई साहब है? ओफो, लगता है घंटी काम नहीं कर रही। अरे भाई कोई साहब है मैं कहता हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, गठिया का मरीज हूँ, आते भी उतर आई है। मैं कहता हूँ कोई साहब है?
1: कौन है?
0: मैं हूँ रमजान खां, वल्द मुहर्रम खां, वल्द बकरीदी खां, वल्द ईदी खां।
1: अरे अरे बस बस रहने दीजिए मियां, आप सिजरा सुना रहे हैं या नाम बता रहे हैं? आज बताइए किससे मिलना है?
0: मकाम आली मिर्जा महमूद खां साहब किबला, क्या इसी दौलत खाने में रहते हैं?
1: जी हाँ मियां।
0: किबला महमूद साहब से मिलना है। मोहतरम मुकाम ने कल के खबरनामे में शादी का इश्तहार दिया है, जरूरत है एक खूब रू सेहतमंद पढ़े लिखे कमाते लड़के की।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, आप अंदर तशरीफ लाइए। मैं मियां को
0: शुक्रिया शुक्रिया, आपकी तारीफ।
1: हाँ मुझे नसीबन कहते हैं।
0: मोहतरमा
1: बैठ जाइए, मैं मियां को भेजती हूँ।
2: अरे बेगम बीबी, कोई बुजुर्ग रमजान खान साहब आए हैं। अरे मियां कहाँ हैं?
3: अरे बुआ, मियां तो गुसल कर रहे हैं, अभी तो एक ही घंटा हुआ है, एक घंटे बाद ही निकलेंगे। चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए और उधर की दुनिया इधर हो जाए, नहाते रहेंगे। किस लिए आए हैं?
1: मियां ने जकिया बीवी के लिए जो खुशी का इश्तहार दिया है ना खबर के कागज में, उसी सिलसिले में आए हैं।
3: अल्लाह करे रमजान मियां कोई अच्छा रिश्ता लेकर आए हूँ रमजान के मुबारक महीने में, ईद के चांद।

0: मेरी बेटी का सुहाग आ जाए। अल्लाह करे मेरी बेटी की तरह सोना जैसा बदन हो, लंबा चौड़ा, जरा हाथ पैर का अच्छा अच्छा रिश्ता लाए हूँ।
1: अल्लाह करे बेगम बीवी।
0: अरे नसीबन जरा देख तो फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, नाश्ता तो ठीक से लगे।
1: अरे बेगम बीवी होश की दवा कीजिए, रमजान में कौन बद नसीब खाएगा, और मियाँ जो आए हैं उनके चेहरे पर तो तीसों रोजा चढ़ा है जबकि आज पहला रोजा है, बिल्कुल लटके मुरझाए पड़े।
0: अच्छा बुआ अब ज्यादा बातें ना करो, हाँ शाम के लिए दाल भिगोनी है।
1: बेगम बीवी अल्लाह जाने आई लगता है पोते पर पोते का रिश्ता लेकर आए हैं बड़े मियाँ।
0: अब मैं क्या जानूं बुआ, बात खुलेगी तब तो पता चलेगा कि किसका रिश्ता लेकर आए हैं, कैसा लड़का है, लड़का क्या करता है, बराबर का है भी या नहीं। लड़की तो माशाल्लाह हाथों पली है, हाथों भरी है।
1: हाँ बेगम बी अब ज्यादा दिन देर ना कीजिए, जितना दिन चढ़ेगा उतना गुनाह बढ़ेगा। फिर माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बड़े कॉलेज तक पढ़ कर आई है, अल्लाह करे लड़का भी अच्छा हो बराबर का हो, जिस तरह बिटिया रानी हजारों में बिठाई जाए तो एक है, इसी तरह लड़का भी हजारों में बैठे तो एक हो।
0: अब चलो भी बुआ बड़ी बातों नहीं हो।
2: जाती हूँ जाती हूँ।
3: अरे कैसी कैसी बतिया।
0: अरे अब नहाकर आ रहे हो, कब से बाहर लड़के वाले बैठे हैं?
4: है? क्या बात है?
0: अरे जल्दी जाइए, बाहर कोई बुजुर्ग रिश्ता लेकर आए हैं सकिया का, अल्लाह करे हमारे हक में फरिश्ता हो।
4: आमीन। इससे पहले तो बेगम जो रिश्ते आए एक से एक थे, एक भी तो ऐसा ना आया जो सकिया के लिए मुनासिब होता। तालीम है तो सेहत नहीं, सेहत है तो तालीम नहीं, और अगर दोनों है तो कमाई नहीं, और अगर कमाई है तो दोनों नहीं।
0: अब देर ना करिए, जरा जाकर देखिए ना, अल्लाह करे ऐसा रिश्ता लेकर आए हूँ सेहत भी हो, तालीम और कमाई भी हो, और नाम भी, और घर के भी अच्छे हो।
4: अच्छा ठीक है, आप जरा खाने पीने के लिए कुछ माकूल भेजिए।
0: और लो अल्लाह रमजान का महीना है, बूढ़े आदमी है, रमजान में क्या खाए पियेंगे, और मान लो सेहत की वजह से अगर रोजा ना भी हो फिर भी रमजान के एहतराम में हर किस ना खाएंगे, और हमारा भेजना भी हराम है।
4: उफ़ अल्लाह तौबा तौबा, वो बेगम पहला रोजा है ना इसलिए कुछ याद ही नहीं रहा।
0: अब जाइए भी, एक तो इतनी देर में नहा कर निकले हैं, अब बातों में उलझ गए, कब से बैठे हैं बड़े मियाँ।
4: अरे हाँ हाँ वो जाता हूँ। अच्छा वो देखो जरा मेरे कपड़े तो ठीक ठाक है ना?
0: एकदम ठीक है।
4: अरे लड़की का बाप हूँ आखिर, सर ऊंचा रहना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। देखिए आप मुझे बेकार बातों में लगा रहे
0: हैं। मैं कब लगाती हूँ, आप खुद ही लग जाते हैं।
4: अच्छा देखती जाओ क्या रिश्ता लेकर आए हैं। अरे यूं ही थोड़े ही मैंने अखबार में इश्तहार दिया था, तुम तो बहुत मना करती रही। नहीं नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता अखबार में लड़की का इश्तहार देना। अब बताओ अगर ना देता तो इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आता।
0: ओफो अब जाकर देखिए ना, और हाँ एकदम हाँ मत करिएगा।
4: ठीक है
0: पहले लड़के को बुलाइएगा। माशाल्लाह हमारी लड़की हाथ पैर की जैसी है, लड़का भी वैसे ही होना चाहिए। देखो कोठी वोठी मुझे नहीं चाहिए, बस खाता कमाता हो, खिला पिला सके, पहना उड़ा सके, लड़की साथ चले तो चार आदमी कहें जोड़ी अच्छी है। आए बराबर की जोड़ी ना हुई तो बराबर का हीरा भी तोल दें तो मैं मट्टी समझूंगी।
4: मैं ना मैं खुदा इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना सलाह मशवरा देखभाल के हाँ कर दूं, फिर बगैर लड़के को देके कौन लड़की दे देगा। अच्छा बेगम मैं चलता हूँ, आप जरा हो रस मलाई गुलाब का शरबत और कुछ नमकीन भिजवा दीजिएगा।
0: हाय अल्लाह क्या बड़े मियाँ का रोजा तोड़वाइएगा।
4: लाहौर में लाकुवत फिर भूल गया, जरा मेरी निगरानी रखिएगा बेगम कि कहीं धोखे में मैं ही कुछ ना खा पी लूं।
0: अब जाइए ना, बड़े मियाँ क्या कहते होंगे, अच्छे घर आए साहिबे खाना का पता ही नहीं।
4: ठीक है जाता हूँ बेगम।
0: जरा ठीक से बातचीत करिएगा, गोश और होश से।
4: अरे आप इत्मीनान रखिए बेगम, आज पहला रोजा है इसलिए जरा भूल चूक हो रही है।
0: अल्लाह अच्छा करे सब ठीक हो।
4: आमीन।
0: देखभाल में इसी मुबारक महीने में बात तय हो जाए तो अच्छा है। ईद के चांद के शुरू में धूमधाम से बारात चढ़े, जब से एमए पास करके जकिया घर बैठी है मेरी छाती अल्लाह कसम इसकी उम्र के बोझ से दबी है, तर हलवे का लुकमा पत्थर की तरह गले में अटकता है। सच है लड़की तो पैदा होते ही जवान हो जाती है।
4: बेगम तौबा है, आपकी तो कभी बात ही नहीं खत्म होती। अरे मुझे इस तरह बता रही हैं जैसे मैं लड़की का बाप नहीं हूँ बल्कि इस घर में कोई नया बावर्ची आया हूँ।
0: अब जाइए ना, अल्लाह आप तो फिर बातों में लग गए।
4: ओफो खौफे खुदा अल्लाह लगी, सच कहिएगा बेगम, बातों में मैंने आपको लगाया या आपने मुझे बातों में लगाया।
0: अब जाइए ना।
4: अच्छा ठीक है जाता हूँ, खुद ही बात का लासा फेंक देती है और मैं मक्खी की तरह लिपट जाता हूँ। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ बेगम, बिस्मिल्लाह।

0: कि माहे मुबारक में बात पक्की हो जाए और ईद में बारात चढ़े।
1: ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, मगर खुदा के वास्ते मोहतरम आप मुझे हुजूर ना कहिए, मैं शर्म से पानी पानी हो गया और आप मेरे मोहतरम हैं।
0: क्या फरमाते हैं आप, मैं आपकी बात से खुश शर्मिंदा हुआ।
1: मोहतरम मैं ठीक अर्ज कर रहा हूँ, वक्त बर्बाद करने से क्या हासिल, लड़की को बुलाइए जरा देख तो लूं। वैसे तो माशाल्लाह आपका चेहरा भी काफी खिला हुआ है, साफ रंग, बड़ी बड़ी आंखें। लड़की अगर आप पर पड़ी होगी तो अच्छी होगी, और अगर अपनी वालिदा मोहतरमा पर तो मैंने वालिदा माजिदा साहिबा को तो देखा ही नहीं।
0: इंशाल्लाह लड़की आपको पसंद आएगी, बस जरा नजरे करम से देखिएगा, लड़की की शादी में एक हज का सवाब मिलता है।
1: तो बुलाइए ना, आखिर हज ही क्या है जो ताखीर कर रहे हैं साहब, है उजर की कोई वजह नहीं, इतना अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और साहब अगर कुछ पर्दे वर्दे का झगड़ा है तो बालाए ठाक रखिए इस फरसूदा रसम को। हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो भला पर्दा क्या करती होगी, और करती हो तो मुझसे क्या पर्दा। बस आप जल्दी से बुलाइए, और एक गुजारिश और है, जिस हाल में है उसी हाल में देखना चाहता हूँ, मेरा मतलब है रंग रोगन के बाद नहीं। हाँ, रंग और रोगन तो दूसरों के लिए है, फिर साहब हजार की एक बात, शर्म में शर्म क्या।
0: आप कहते हैं तो मैं अभी बुला लेता हूँ, आपसे क्या परवाह।
1: हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ, लड़के को चाहे लड़की ना पसंद आए मगर अपनी खूबियों की वजह से लड़की को लड़का जरूर पसंद आएगा। आ, आ, आ,
0: आ। अभी लेकर आता हूँ। वैसे जनाब हमारे यहाँ जो माँ बाप की मर्जी वही लड़की की मर्जी। हम शरीफ अभी इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए हैं कि लड़की लड़के को पसंद करे, हमारे यहाँ ये रस्म नहीं मानी जाती।
1: जी साहब, आप बातों में ही लगे रहेंगे या असल मतलब पर आएंगे। हाँ, आप जल्दी से लड़की को लेकर आइए, उसी के बाद ही बात होगी।
0: जी ठीक है, बेहतर बेहतर।
2: अरे बेगम बेगम, अरे सुनते हो, बड़े मियाँ कहते हैं लड़का बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
3: अब तो ऐसा करिए, लड़के को अफ्तार पर बुला लीजिए, खाने के लिए ना कहिएगा, मगर हम रूखी सूखी के नाम से बेहद तकल्लुफ से दस्तरखान बिछा लेंगे।
2: हाँ हाँ, बेहतर है, कल ही इंशाल्लाह अफ्तार पर बुला लेते हैं, मगर हाँ बड़े मियाँ सकिया को देखना चाहते हैं। पसंद करने का पूरा अख्तियार है शायद उन्हें, है मालूम होता है कोई खास आदमी है।
3: आए होंगे, मगर नाम नाम वाम बहुत खराब है।
2: अरे बेगम, नाम वाम से क्या होता है, मैं समझता हूँ क्या अर्ज है भाई, शरीफ ज़ादे हैं, उजले पोश, नाना दादा के बराबर
3: जी।
2: दिखाने में क्या हर्ज है, वैसे जकिया भी तो पर्दा बराए नाम ही करती है, है? अब जैसा कहिए।
3: मैं भी नहीं समझती कि कोई हर्ज है, अच्छा दिखा दीजिए, अल्लाह करे पसंद आ जाए।
0: महजर अंदर क्या गया बड़े मियाँ, फिर से बेखबर हो गए, कब से जगा रहा हूँ, चुटकी बजाई, ताली बजाई, पैर पटका, मगर खर्राटा खराखर छोड़े जा रहे।
4: अब्बी, बड़े मियाँ पर तो रोजा सवार है, इफ्तार से पहले शायद ही उठे, जब तक तुम मरा ही समझिए।
2: मुज़किया क्या बदतमीजी है, इतना भी ख्याल नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं।
4: मैं क्या जानू, आए होंगे, जरा भी देखिए तो, कोई कह सकता है बड़े मियाँ सो रहे हैं, मुंह खुला हुआ, आंखें अंदर। अल्लाह का शुक्र है खर्राटे की आवाज ना हो तो लोग तो मिट्टी डालनी शुरू कर देंगे।
2: बस एक लफ्ज भी बकवास नहीं, तुम्हारी अम्मी ने सुन लिया तो हजार सुनाएंगी।
4: मैं तो कहती हूँ अब्बी, ना जाने अल्लाह इतनी उम्र क्यों देते हैं, बेमसरफ, बेकार, बेकाम बड़े मियाँ का दुनिया में क्या काम, सिर्फ खर्राटे ले रहे हैं। अल्लाह ना करे अब्बी इतनी उम्र किसी की ना हो, आदमी जहाँ जाए तमाशा बन जाए, अब ये तमाशा नहीं तो और क्या है।
5: माफ कीजिएगा, रोजे की हालत है, जरा झपकी लग गई थी।
0: माफ कीजिएगा किबला, आप मेरे कदम की आहट से जाग उठे होंगे, है नाचीज आपके आराम में मुखिल हुआ, माफी चाहता हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं मोहतरम, अपनी तो नींद ही ऐसी है, जरा

0: पतंग हवा में उड़े तो आँख खुल जाती है। ए गुस्ताखी माफ कीजिएगा, शायद आप खड़े हैं मोहतरम और मैं बदतमीज लेटा हुआ हूँ।
1: कैसी बातें करते हैं आप तो बुजुर्ग हैं।
0: यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, आप कैसी बातें करते हैं? अरे उम्र से कुछ नहीं होता, आप मेरे बुजुर्ग हैं। जरा लड़की बुलाइए, बात पक्की हो जाए, रसम पूरी कर ली जाए।
1: लड़की तो आपके सामने बैठी है कबला।
0: माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, आफ्ताब महताब, चेहरा गुल गुलाब, जिस्म सर सब्जो शादाब, चमन चमन गुलगुलिस्ता, आंखें गहरी झील, सुभानअल्लाह और माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्लीम तस्लीम।
1: बेटी अभी तक तुमने सलाम नहीं किया।
0: कोई जरूरत नहीं किबला, कोई जरूरत नहीं।
2: तस्लीम, आदाब बजा लाती हूँ।
0: तस्लीम तस्लीम, हजार बार तस्लीम, हजार बार आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा ऐसे कीजिए, जरा करीब आइए।
1: आ जाओ बेटी,
0: जरा और करीब आइए, जरा करीब से देखूं, चश्मा साफ करके देखूं, कहीं दाग धब्बे मेकअप में तो नहीं छुपा है। अफो, ये कमबख्त मेकअप बहुत धोखे की चीज चली है। नहीं, बहुत खूब मेकअप बिल्कुल नहीं है साहब, लड़की अभी तक तो पसंद आई, रंग रोगन तो कुदरती है, माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, जिस्म ताकतवर है। वो अब जरा चलकर दिखाइए, मैं जरा चाल देखना चाहता हूँ।
1: क़िबला माफ फरमाइएगा, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता।
0: जी आप बीच में मत बोलिए साहब, आदमी एक ढेले की चीज लेता है तो हजार बार परख कर देखता है। हाँ, हाँ, जिंदगी भर का साथ है, शादी बाद मालूम हो लड़की लूली है। चाल में गजाल की मस्ती नहीं, जिसमें जवानी नहीं, शबाब नहीं तो शादी करने से क्या हासिल, बाद में तल्लाक हो। हाँ, जब क़िबला जवानी का बोझ होता है तो चाल में फर्क आता है, और मैं चलाकर ये भी देखना चाहता हूँ।
1: आप लड़के के बारे में भी तो कुछ बताइए।
0: अरे साहब, आप लड़की को पहले चलाकर दिखाइए, आजकल लड़के ऐसे नहीं, सब कुछ देखते, चलते हुए भी और बैठे हुए भी।
1: बेटी
2: जी,
1: अंदर जाओ तुम।
2: तस्लीम,
1: आपने देख लिया क़िबला, मेरी लड़की लंगड़ी नहीं है।
0: अब देखे साहब, गुजारिश है दौराने गुफ्तगु लड़की को रूबरू रहने दीजिए, जिंदगी भर का साथ उसका है, आप तो आज है कल नहीं।
1: बस क़िबला अब इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है।
0: देखे देखे साहब, आप पुराने ख्यालात के हैं, नई रोशनी नई हवा आपको छू भी नहीं गई है। अरे लड़की को अंदर भेज कर बड़ा सितम किया आपने, और देखे साहब बहुत हो चुका, कब से आप इस नाचीज को क़िबला कह रहे हैं। अब बराए करम अपनी जबान पर मेरे लिए क़िबला का लफ्ज हरगिज ना लाइए। हाँ, मुझे शर्मिंदगी होती है, आपका रुतबा और आपका रिश्ता मुझसे बहुत बड़ा है साहब।
1: कैसी बातें कर रहे हैं आप?
0: है? अरे मुबारक हो साहब, आप किस्मत वाले हैं, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है, बहुत बड़ा घर है, दरवाजे से हाथी निकल सकता है।
1: जी शुक्रिया।
0: माशाल्लाह लड़की आपकी बहुत खूबसूरत है, बड़ी सुडोल गुदास दबीज, मगर जरा पुराने ख्याल की मालूम होती है। आजकल की लड़कियां दुपट्टा कहाँ ओढ़ती है, आस्तीन कहाँ लगाती है, और इतना ढीला ढाला कपड़ा कहाँ पहनती है साहब।
1: देखिए क़िबला, शादी के बाद लड़के का जो जी चाहे पहनाए उड़ाए, जिस कदर जी चाहे फैशन कराए, पढ़ी लिखी लड़की है, तबीयत में जिद बिल्कुल नहीं है, मोम की नाक है, जिधर जी चाहे मोड़ लीजिए।
0: हाँ, वो तो मैंने देख लिया साहब, जिस्म अच्छा है पानी जिस बर्तन में डालिए वो ही शक्ल बन जाए, साड़ी चूड़ीदार करारा शलवार और हवाई मेजबान का लिबास सब अच्छे लगेंगे। शोर फैशन परस्त हो तो बीवी में चार चांद लग जाते हैं साहब। बराए करम ये बताइए, आपकी लड़की क्लब व्लब भी जा सकती है कि नहीं?
1: देखिए मोहतरम,

0: ये चीजें मेरे घर में तो चलती नहीं। वैसे लड़की पढ़ी लिखी है, आदाब व तमीज से वाकिफ है, तहजीब याफ्ता है, बासलीका है, बाशऊर है। शादी के बाद जिस तरह लड़का रखेगा रहेगी।
1: कुछ अंग्रेजी नाच बाज भी जानती है?
0: मैंने अभी अर्ज किया, ये सब चीजें मेरे घर में नाच नहीं है।
1: आप बजा फरमाते हैं, आपका कलमा दुरुस्त है, ये सब बाप के लिए जरूरी नहीं, मगर फैशन परस्त शोहर के लिए बेहद जरूरी है साहब। खैर, लड़की अच्छी है, भरपूर जवान है, चाल ढाल से जवान है, रिश्ता मुझे मंजूर है साहब। आप मेरे इजार बंद से अंगूठी खोल लीजिए साहब। मुबारक हो। अरे मंगनी की रस्म पक्की हो गई साहब। शाम को इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब मिठाई आपके यहाँ पहुंच जाएगी। हाँ, फकर के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम करिए, और ईद के चांद इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से बारात आएगी और बहुत ही शानदार दावत वलीमा होगा। अब बिस्मिल्लाह, अब देर किस बात की, ऐसा अंगूठी खोलिए, महफूज रहे, इसलिए मैंने कई गांठ लगा लिए है। मैं जरा खोलने में कासिर हूँ, अब जरा जहमत फरमाइए साहब।
0: अरे यूं ही कैसे? पहले आप ये तो बताइए साहब कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है, हसब नसब क्या है, शिजरा क्या है?
1: आपकी इतनी उम्र हो गई, आप बरखुदार है, आप कमाल करते हैं। कहीं लड़के के बारे में इतने सवाल किए जाते हैं? अरे लड़का रईस इब्ने रईस है, खूबरू तजुर्बेकार, जानदीदा, मुश्ताके नजर, फैशनेबल, और आपको क्या चाहिए? अरे आपका पैसा वसूल हो गया जो आपने इश्तार दिया था, अब खोलिए ना किबला। इतनी देर से इजार बंद आपकी तरफ बढ़ाए हुआ हूँ, खाली सोने की अंगूठी है, मुझ पर हीरा लगा हुआ है।
0: जिद ना करिए, पहले आप लड़के को दिखाइए। ऐसा करिए, कल शाम को अफ्तार पर लड़के को ले आइए, साथ ही उसका शजरा भी। तालीम याफ्ता तो जरूर होगा, मगर तालीम से ज्यादा जरूरी तरबियत और माहौल है। बात करने से तरबियत और माहौल का पता चल जाएगा।
1: आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आप नेक काम में देर कर रहे हैं।
0: तो आप आज ही शाम को लड़के को ले आइए, जो नमक रोटी मैसर हाजिर कर दूंगा।
1: आप नेक काम में देर कर रहे हैं साहब।
0: आप अगर अपनी सवारी ना लाए हो तो मेरी गाड़ी ले जाइए और लड़के को ले आइए, जब तक मैं अफ्तार के असबाब मयसर कर दूंगा। अगर आप ना जाना चाहें तो टेलीफोन करके बुला लीजिए, कम से कम लड़के के यहाँ टेलीफोन तो होगा।
1: किबला, आप पीरी में बड़ी नादानी कर रहे हैं, ताखिर की नामाकूल वजह मेरी समझ में नहीं आती। हाँ
0: देखिए, जब तक हम लड़के को ना देख लें, उसके हसब नसब के बारे में ना जान लें, तो कैसे यहाँ कर सकते हैं?
1: देखिए देखिए, मैं बड़ी देर से आपकी नामाकूल बातें सुन रहा हूँ, आपकी नादानी देख रहा हूँ। क्या अभी आपने माँ का दूध छोड़ा है? हाँ? आप अपने को लौंडा मुकर्रर किए हैं जो आप कुछ नहीं समझते। ना जाने आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं नाई हूँ जो रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं खुद लड़का हूँ। आप मुझे समझते क्या है? अरे रमजान की वजह से आपको रमजान मियां नजर आता हूँ, रमजान ना होता तो मैं मिस्टर रमजान नजर आता। ये तो रमजान की वजह से आप मुझे शेरवानी में देख रहे हैं, वरना आप शार्किन के सूट में देखते। हाँ
0: आप तशरीफ ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो रमजान मियां के रमजान के महीने में आपके मुंह पर इतने घूसे मारूं कि आपका रोजा आपके खून से धुल जाए। और शर्म नहीं आती शादी करना चाहते इस उम्र में? अरे आपका कमाल चल गया।
1: आप तो चचा साहब बेकार नाराज हो रहे हैं। बाखुदा, अभी मैं कुआरा हूँ और 60 बरस से कोई अच्छी लड़की की तलाश है जो मेरे हाथ पैर पर ठीक लगे। आप खुशकिस्मत है, आपकी लड़की मुझे पसंद आई। मैं कोई कम फैशनेबल आदमी नहीं हूँ। हाँ, अंग्रेजी नहीं जानता तो क्या हुआ, अच्छे लोगों में उठने बैठने की वजह से मैं सब मतलब समझता हूँ। किशमिश भी छुरी काटे से खाता हूँ और पोस्टमैन से फुल ड्रेस होकर लेटर लेता हूँ साहब। हाँ,
0: अब चलते बनिए आप, चलते बनिए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे और मैं ऊपर नजर आऊं।
1: चाचा साहब आप बेकार नाराज हो रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूं? आप रिश्ते में मेरे बुजुर्ग हैं, बाप के बराबर हैं।
0: अरे तशरीफ ले जाइए यहाँ से।

0: जकिया के अब्बू क्यों चिल्ला रहे हो? रोजा चढ़ा है या मेहर पर झगड़ा हो गया? लड़का तो अभी देखा ही नहीं।
1: अम्मी आदम चचा जान तो नहीं बिगड़ गए।
2: सुनती हो, बड़े मियाँ खुद ही लड़का है, अपनी बात लेकर आए हैं।
0: तौबा, अच्छा और दो इश्तहार अखबार में। अरे ओ नसीबन, जरा झाड़ू तो लेकर आना।
1: क्या हुआ बेगम बीबी, क्या कोई जिंदा गंदगी नजर आई है?
0: जरा मार तो दो तीन जानी पकी पड़ती है, शादी करने आया है।
3: पति नहीं तो अभी फाड़े देती हूँ, वही की जवानी नवासी बोती नहीं थी, यहाँ चलाया हुआ।
0: अखबार में इश्तहार फिर से दे दीजिए, लड़के की जरूरत नहीं है। अल्लाह बताए इश्तहारी शादी से। अब जाइए ना, इश्तहार देकर आइए।

0: जरा झाड़ू तो लेकर आना।
1: क्या हुआ बेगम बीबी, क्या कोई जिंदा गंदगी नजर आई है?
0: जरा मार तो दो तीन पड़ती है, शादी करने आया है।
2: पति नहीं तो अभी फाड़े देती हूँ, वो एक ही जवानी नवासी बोती नहीं थी जो यहाँ चलाया हुआ।
0: बार में इश्तहार फिर से दे दीजिए, लड़के की जरूरत नहीं है। अल्लाह बचाए इश्तहारी शादी से।

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा उनवान था शादी का इश्तहार। तहरीर थी जनाब जावेद उर्फी की, पेशकश सरफराज अहमद की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुने फिल्मी नगमे।

दो दिलों का संगम, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में है। फिल्म का नाम है हम।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समात फरमाइए। फिल्म का नाम है गुप्त।

अलका याग्निक की आवाज में यह नगमा हमने आपको सूर्य फिल्म से सुनवाया। फिल्मी नगमों की प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है। अलका याग्निक और मनहर ओधास की आवाजों में फिल्म का नाम है त्रिदेव।

0: सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में ये नगमा आपने सुना शेषनाग फिल्म से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी हैं। फिल्मी नगमे यहीं तक थे, अब वक्त हो गया है खबरों का।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी ने भारत इटली क्लीदी शराकत दारी के लिए आइंदा का लाह अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिजाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़श्ता बरसों में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खसूसी क्लीदी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं, जो जमहूरियत और मुस्तकबिल के मुश्तरका नजरिए पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का जिक्र किया है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आलमी निजाम में नुमाया तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं, भारत इटली शराकतदारी में आला तरीन सियासी और इदारा जाती सतहों पर मुसलसल राबतों से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस शराकतदारी को नई समत मिल रही है, जिसे इकतसादी इनफरादियत, समाजी अख्तरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुरानी तहजीब से तहरीक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने इस मजमून में कहा है कि उनके इश्तराक से इस मुश्तरका समझ की अक्कासी होती है कि 21वीं सदी में खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार, मुल्कों की अख्तरा, तवानाई के बंदोबस्त, मुंतकली और इख्तदार आला को मुस्तहकम करने की सलाहियत पर होगा। दो कौमी रोजनामों में शाये मजमून में दोनों रहनुमाओं ने नए अहदाफ की हुसूलियाबी और अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसत देने के अपने अहद का इरादा किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक का मकसद इटली की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की महारत और भारत की तेज रफ्तार तरक्की, इंजीनियरिंग की सलाहियत, इख्तरा के इको निजाम और कारोबारी मजबूती के दरमियान मजीद तालमेल पैदा करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आहान ग्यू बाक के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफाई सनत और अहम नौयत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम किए जाने के तौर तरीकों

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज है बुधवार और आज हम आपके साथ हाजिर हैं आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित ये कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम का नाम आपकी पसंद। आपके मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं, पत्र भी आ चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, आपके पत्र और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। ये पहला पत्र हम शामिल कर रहे हैं कैरो पंजाब से। लिखने वाले हैं गुरशरण लाल चालोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। यह अगला खत आया है मसीता डबवाली से। लिखने वाले हैं दर्शन लोट, मूर्ति रानी, गांव बारेका सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन और हनी लोट। ये हम तक मैसेज पहुंचाने वाले हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। इनके साथ हैं शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगला मैसेज आया है लाल गिरी गोस्वामी जी। लिखते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। ये हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लाल गिरी गोस्वामी जी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। अगला मैसेज है चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन, गुरमन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, आदर्श पाल जोशन वैनकूवर कनाडा से, रोबिन सिंह जोसन। चक 78 LNP से डॉक्टर विचित्र सिंह, पोत्रा अरविंद्र सिंह। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और इशिता देवांगन। यह अगला मैसेज आया है गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से। लिखने वाले हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, किड़ूराम जोया, हनुराम, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा। यह अगला खत हम तक पहुंचा है छबड़ा राजस्थान से। लिखने वाले हैं आसिफ अली, वाहिद अली और शमीम बानो। अगला खत है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। गांव नथाना पंजाब से मैसेज आया है। लिखने वाले हैं हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। पटेल नगर मनोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। लीजिए सुनवाते हैं श्रोताओं आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
8: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
9: बिल हो रहा है।
8: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कम

0: टर्म मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है जनकपुरी सहारनपुर से। लिखने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। मलका जिन्ना भटिंडा से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। ये लिखने वाले हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका। अगला मैसेज आया है गांव घमंडिया से। लिखने वाले हैं जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढोकिया, इवा धारणिया, 5BNPM से हैं, कीकर वाली जोड़ी से, अशोक मांजू, सिद्धार्थ मांजू। खारिया जिला सिरसा हरियाणा से हैं। लिखने वाले प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। अगला मैसेज आया है फाजिल का पंजाब से। लिखने वाले हैं विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, याशिका, विद्या देवी और सारा मायल। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। गांव नाईवाला तहसील टीबी जिला हनुमानगढ़ से हैं डॉक्टर गौरव कंडियारा, राणा सिंह कंडियारा, लड्डू मननू और मीतो कंडियारा। चक 5MD पतरोड़ा से लिखने वाले हैं मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। आइए सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

दोस्तों, आपके पत्र भी हम तक पहुंचे हैं। ये पत्र आया है सरगुजा मैनपाट से, सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से। लिखने वाले हैं प्रवीण डोम, सरफुद्दीन डोम, वली डोम और डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से हैं। वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आरायण से एक खत आया है। लिखने वाले डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता, विक्रम, सुशांत, दिशा और मोक्ष। मलोट पंजाब से, राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका, रमन इंदौरा, रितु, भविंश खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक और बेबी दीपांशी इंदौरा। ये मैसेज हम तक पहुंचा है लोगढ़ ठाकुरांवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सनी और जैमिन भावसार। संगरिया से हैं श्याम मिड्डा, सुमन मिड्डा, चक 6 MSR, अनूपगढ़ से रमेश कुमार, पारुल, अंशुमन और समीर रामदेव। जलंधर पंजाब से लिखने वाले हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत,

भरत, कमल, साहनी, सूरतगढ़ से हैं अशोक कुमार सोनी, सुमन सोनी, भानुप्रिया सोनी और अरुण सोनी। यह अगला मैसेज आया है बालोतरा राजस्थान से, चेनाराम, दिनेश, तेजस्विनी, डाली और जसराज। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और तन्मय गजभिये। एक मैसेज और है विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से, लिखने वाले हैं विजय पाटिल। विडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आइए सुनवाते हैं दोस्तों आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

यह अगला मैसेज हम तक आया है खोखरा वाली से। लिखने वाले हैं विरोध बारासा, विनोद बारासा। आपके खत भी हम तक पहुंच रहे हैं। अमलेश्वर से ये खत आया है। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। शेरगढ़ मलोट से ये खत हम तक पहुंचा है। लिखने वाले हैं बलराम, बेबी लक्ष्मी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। शेरकोट जिला बिजनौर से लिखने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हीना कोसर। बुक फार्म रतिया से लिखने वाले हैं जीवन सिंह बुक, शंटी, सिमरन बुक, कौशल्या रानी, मन कीरत, जशन बुक, भूषण खेड़ा, गुरशिंद्र बुक और इनके साथी। बगबुडवा पथरिया से हैं नरेन नेतमा, कुसुम, प्रोनिका और उत्कर्ष नेताम। मंडी गोलूवाला से हैं ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। लीजिए श्रोताओं, सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं।

0: दोस्तों अब लेते हैं कार्यक्रम में छोटा सा विराम, क्योंकि आज हैं प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत की पुण्यतिथि, और इसी पर आपको एक वार्ता सुनवाते हैं। वार्ताकार हैं अंतरिक्ष शर्मा, आइए सुनते हैं।
1: फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, बिखरी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, पत्तों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर था रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल।

नील फलक। 20 मई सन 1900 का दिन, वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव कौसानी में पंडित गंगादत्त पंत के घर एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ जिसने बचपन से ही रचना करना और कविता लिखना शुरू कर दिया था। इस बालक का प्रकृति के साथ एक ऐसा सुमधुर अंतरंग संबंध स्थापित हुआ कि आगे चलकर यही बालक प्रकृति के छाया चित्रों का सुकुमार कवि बना और हिंदी साहित्य में छायावाद के चतुर स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहलाया। इस बालक का, इस विलक्षण प्रतिभा का नाम था सुमित्रानंदन पंत। बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ करने वाले सुमित्रानंदन पंत की शुरुआती शिक्षा कौसानी के गांव में ही हुई थी। 7 साल की अल्पायु में स्कूल में आयोजित हुए काव्य पाठ में उन्हें पुरस्कृत किया गया। वो कहते हैं ना श्रोताओं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाया करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्कूली काव्य पाठ में शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से सम्मानित होने की वजह से उनका यश दूर दराज के गांव तक फैल गया। वो बचपन में जहां भी जाते लोग उन्हें कविता सुनाने का आग्रह किया करते थे। लोगों के इस प्यार और इस सम्मान ने उन्हें अपने आसपास के परिवेश और अपनी धरा व पर्वतमालाओं से घिरे अपने रहवास क्षेत्र से प्रेरित होकर काव्य रचना करने की प्रेरणा दी। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू कर दिया। अपनी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाया। उनका यही मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर बना। ये समय सुमित्रानंदन पंत का काव्य रचना का प्रारंभिक काल था जिसमें प्रकृति का पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश उन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। इससे प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी कविता पर्वत प्रदेश में पावस यानी पहाड़ों पर होने वाली बरसात का वर्णन करते हुए लिखा, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अपनी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में पूरी करने के बाद सुमित्रानंदन पंत ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के नगर बनारस और इलाहाबाद का रुख किया। चूंकि उस वक्त बनारस स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण गढ़ या केंद्र बिंदु माने जाते थे, इसलिए पंत जी को अल्मोड़ा छोड़कर जाना पड़ा। 1918 में उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनका अध्ययन सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के साथ अंग्रेजी छायावादी कवियों की कृतियों पर केंद्रित रहा। सन 1919 में वे काशी यानी बनारस से इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयाग गए और कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी युवावस्था के इस काल में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने काव्य रचना अपना जीवन का ध्येय और परम लक्ष्य बना लिया। 1926 में पल्लव के प्रकाशन के साथ उनका हिंदी साहित्य में सफर शुरू हुआ। इस पहली रचना ने ही उन्हें छायावाद के पहले स्तंभ जयशंकर प्रसाद के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। यहां से उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की जगह मानक हिंदी को वरीयता देने की हिमायत की। सन 1931 में सुमित्रानंदन पंत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के काला कांकर जाकर बस गए। 9 साल तक प्रकृति के करीब और प्रकृति की गोद में रहने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के प्रगतिशील विचारों का अध्ययन किया। 1941 में वे वापस अपने गृह नगर अल्मोड़ा लौट आए और उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़ गए। यहां उन्होंने श्री अरविंद घोष की रचना द लाइफ डिवाइन का अध्ययन किया। इसके 3 साल बाद वे मद्रास और तत्कालीन पौंडीचेरी के अरविंद आश्रम में रहे और वहां रहकर आध्यात्म और योग साधना की। 1946 में इलाहाबाद लौटकर उन्होंने फिर से खुद को साहित्य के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया। श्रोताओं, 1916 से 1935 के दौरान छायावादी चरण में उन्होंने पल्लव के अलावा वीणा, ग्रंथी, गुंजन और ज्योत्सना जैसी रचनाओं का प्रकाशन किया। अपने रचनाकाल के दूसरे चरण के दौरान वो कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्राइड और महात्मा गांधी के प्रभाव में सौंदर्य चेतना से बाहर निकलकर आम आदमी को हाड़ मांस का आदमी मानते हुए उसकी पहचान करने का प्रयास किया। इसी दौर में उनके युगांत, युगवाणी और ग्राम्या संग्रह प्रकाशित हुए। अपने तीसरे रचना युग में वह अरविंद घोष के

शिक्षण से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए और इसी दौरान वे आध्यात्मवादी अवलोक में विचरण करते नजर आए। इसी काल में उनकी रचना अतिमा, रजत शिखर और लोकायतन प्रकाशित हुई। 1946 से 1958 तक उनके कई काव्य संग्रह अस्तित्व में आए, जिसमें युगांतर, स्वर्ण किरण, सत्यकाम, कला और बूढ़ा चांद, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, पतझड़, अवगुंठित और मेघनाद वध प्रमुख काव्य कृतियां रही। सुमित्रा नंदन पंत ने 1958 में अपना काव्य संग्रह चिदंबरा प्रकाशित किया, जिसमें 1937 से 1950 तक की उनकी लगभग सभी रचनाओं का संचयन है। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। इसके बाद वे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से जुड़े और एक परामर्शदाता के रूप में काम किया। 1950 से 1957 तक वे आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रमों की देखरेख किया करते थे और उन्होंने आकाशवाणी के रेडियो प्रसारण के माध्यम से कला, संस्कृति और साहित्यिक रचनाओं को सुदूर क्षेत्रों तक प्रसारित करने का प्रयास किया। श्रोताओं, रेडियो नाटक की विधा को आकाशवाणी पर सर्वप्रथम प्रसारित करवाने का श्रेय भी सुमित्रा नंदन पंत को ही जाता है। इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत साहित्य रचना के रेडियो प्रसारण के पुरोधा पुरुष भी रहे। पंत जी को अपनी कविता संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण देकर भारत के तीसरे सुविख्यात सम्मान से अलंकृत किया। 1969 में अपनी रचना संग्रह चिदंबरा के लिए उन्हें हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस लिहाज से वो हिंदी भाषा के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बने। 28 दिसंबर 1977 को तत्कालीन इलाहाबाद में 77 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। श्रोताओ, अपने पूरे जीवन काल में अविवाहित रहे सुमित्रा नंदन पंत ने अपना सारा जीवन काव्य यात्रा में समर्पित कर दिया। उनका समस्त काव्य व्यवहार उनके लोक जीवन और लोक व्यवहार से अद्भुत मेल खाता है। उन्होंने अपने जीवन में रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें छायावाद के अतिरिक्त प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। श्रोताओं, पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई, पंत स्वयं उसे चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। इस चित्र भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में अतिरेक किया है। अपनी कविता पल्लव में इस चित्र भाषा का प्रयोग करते हुए वे कहते हैं, अरे ये पल्लव बाल सजा सुमनों के सौरभ हार, गूंथते वे उपहार, अभी तो हैं ये नवल प्रवाल, नहीं छूटो तरु डाल, विश्व पर विस्मित चितवन डाल, हिलाते अधर अधर प्रवाल। पंत जी केवल प्राकृतिक सुषमा और ग्राम्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ मानकर काव्य रचने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने प्रगतिशील चेतना को प्रवाहित कर विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को लगातार आहत करता रहा। उन्हें यह देखकर दुख होता कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। इस पीड़ा पर वे अपनी कविता वे आंखें में लिखते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संगार कगार सदृश बह खिसका, लहराते वे खेत त्रिगो में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, हरियाली जिसके तृण तृण से। भारत की सामाजिक दुर्दशा और भयंकर अकाल की त्रासदी को शब्द देते हुए अपनी कविता भारत माता में उन्होंने लिखा, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत की सामाजिक कुरीतियों और ग्रामीण अंधविश्वासों से खिन्न होकर उन्होंने अपनी कविता ग्राम चित्र में लिखा, यह तो मानव लोक नहीं रे ये है नरक अपरिचित, यह तो मानव लोक नहीं रे ये है नरक अपरिचित, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित, सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। पंत जी ने अपने प्रौढ़ काल में श्री अरविंद के मानवतावादी दर्शन को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया।

0: को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने आशावादिता की एक मिसाल दी। इस मिसाल के लिए उन्होंने अपनी कविता मानव में लिखा, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर अनुपम, मानव तुम सबसे सुंदरतम, मानव तुम सबसे सुंदरतम।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सुनी अभी आपने वार्ता, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत की पुण्यतिथि पर वार्ताकार अंतरिक्ष शर्मा, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। और ये खत हम तक पहुंचा है बलिया से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी। गाजीपुर से हैं प्रतीक, रोशनी राय, प्रांजल राय। गाजीपुर से ही हैं अजधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। बागपत से हैं लिखने वाले संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। मैसेज भी आया है, ये मैसेज आया है बालोद छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डोली, बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। मानसा पंजाब से हैं लिखने वाले जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा। हनुमानगढ़ फाजिलका से हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी, तिवांशी, वानी। बेहरवाला खुर्द सिरसा से हैं लिखने वाले बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना, हिमानी और शिवम जाखड़। अंबाला हरियाणा से हैं लिखने वाले रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द राहुल। नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र सिंह, राजेंद्र शाह। गांव खोखरा वाली से हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। आई श्रोताओं सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

श्रोताओं, फरमाइश हम तक आई है हनुमानगढ़ टाउन से, सुल्तान सिंह तरड़, मुकेश कुमार तरड़, रामचंद्र, कपिल देव तरड़ और हिमानी जाखड़। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निखिल वर्मा और प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। चक 6 MSR अनूपगढ़ से कृष्ण टेलर, गणपत टेलर, रमेश कुमार। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं लिखने वाले विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत और चेतना नाहता। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक, तन्वी और जयपाल यादव।

दोस्तों, समय का अभाव रहता है, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि आपके ढेर सारे पत्र और मैसेजेस आप तक पहुंचाए जाएं। खैर, ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दीवांशी विश्वकर्मा। गणेश चौक रतनाड़ा जोधपुर राजस्थान से हैं, लिखने वाले नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष सहारन। आइए सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

अभी आप कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिराई की। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुन पाएंगे 6:30 पर, जिसे हम प्रसारित करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 पर। 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे ईमेल व पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रोत्तर। इसके अलावा बाजार भाव व मौसम की जानकारी आपको सुनवाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के प्रस्तोता होंगे वेद प्रकाश वर्मा। 7:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम रहेगा एक ही फिल्म से। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम रहेगा चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो मन भावन। प्रस्तोता होंगे विकास पारिक और कार्यक्रम के निर्देशक व संयोजक नवीन सिसोदिया।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी 2 घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं।

0: ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां हालात बेहतर और नियंत्रण में हैं। श्री राठौड़ ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझ कर उपयोग करें।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5,000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हर एक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125 करोड़ 60 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली CSMC बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दक ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की।

0: पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।

0: जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगरपालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रवधाई निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3000 रुपये महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू की दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश री पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश रा घनखर हलका माए लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन री शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो के पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवणो जरूरी है। पीठ कहो के ओ मुद्दो सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। इन बीच प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावन रो काम चाल रो है। पाली जिला रा

0: दूर दराज हलका और ढाणिया माए प्रगणक घर घर जार एच एल ओ ऐप जरिए जानकारी भेड़ी कर रहा है। ई डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अरज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाए लागण रा वाकया माए सामाजिक तत्वों रा शामिल वेवन रीठा पड़ी है। आमाए राजस्थान री दो घटनावां शामिल है। पालीरा अमरपुरा स्टेशन के नवी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ों बाड़बारी कोशिश करण रीठा पड़ी है जिन कारण वहाँ डिब्बा माए लाई लाग गई ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना उसरूफ हेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रा तेत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। मारो काल समारह गांव रो पैदल दौरो कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियो जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदो मिलन रे बारे माए जानकारी हासिल कर रहा है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हलका रा धम्बोला गांव माए ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रे मुजब प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रा नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी री उपलब्धता रे बारे माए मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज कीनी। इन बीचे प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों री तुलना माए भारत माए हालात बेहतर और काबू माए है। वह जनताओं जरूरत रे मुजब तेल री खरीदी करण री अरज कीनी।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए अब बच्चा ने उपमारी ठौड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इनना बेगोई आंगनबाड़िया माए बच्चा ने दिया जावन वाला भोजन माए शामिल करण बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माए मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करण रा हुक्म ही दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य माए करीब 5,000 नुआ मकान बनाया चावेला। इन रातेत हर पात्र जना ने खुद रो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग माए अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125,60,00,000 रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश माए स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर माए नगर निगम री ओर खास गेलां और जनता रे आवन जावन रेट

0: थोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश में जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माई शहर ने रूपाड़ो बनावन सारू नगर निगम री ओरों सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रियो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं QR कोड स्कैन कर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवारी शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माई जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माए कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं भेला जिन्हों ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां री मनमानी छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा एहलकारा ने मुजब अब आठ टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो जावेला। इन सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया गया है। अरब मौसम प्रदेश माए पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच घनखट होना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीच जदके रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जनावरां और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोणा पीवण रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोड़ा लू बाजन सारू चेतायो है। इविच लाडला 24 घंटा माए श्रीगंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य माए सबों गर्म ठोड़ रहो। बीकानेर माए रात्रि भगत सबों बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी जियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू माए बत्तों बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। राजधानी जयपुर में आई 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी जियो। इबीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी ठोड़ा छाया रा प्रबंध करी जिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो जा रियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीस।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजों रा इलाज में जुड़िया सगला जरूरी इंतजामात करण रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी जी। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेतीबाड़ी रा बेहतर तरीका, प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा माए जानकारी दीनी। खेतीबाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखण सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बधा दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपां रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ

भाई भी प्रभावित हो उसके तो बिल्कुल सा टेमो टेम पर मैं माने बुलाता रहांगा। और कार्यक्रम के बीच बीच में मिट्टी की महकू जुड़े राजस्थानी लोकगीत और भजना को प्रसारण इन त्रें थे जारी रखो और वो माने बहुत ही अच्छा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सा। गीत भजन जगह है मैं थाना यहीं सुनाता रहांगा। और अब टाइम है एक भजन सुनने को तो थाना सुनावा ओ भजन। और बिंग आबाद थारा जगह संदेश है, ईमेल संदेश है और पत्र है, वह भी और पढ़ांगा।

0: लक्षिता वर्मा आ कार्यक्रम की बधाई लिखी है और प्रस्तुत कन्या ने राम राम भेजी है। तो थाना भी बहुत बहुत राम राम सा, थाना कार्यक्रम पसंद आवे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और रायसी नगर में आपने कहना अगलो जो ईमेल है वो आयो है सोन लाल प्रवीण और चेतन राम को, सगई बीकानेर जैन मार्केट हूँ, लक्षिता वर्मा, दिव्या, प्यांशु, ममता, काव्या और बंगा परिवार का लोगों की तरफों भी आपने कहना ईमेल पुग्यो है। आ कार्यक्रम की बधाई लिखी है, आगे लिखा है कि माना खेती बाड़ी संबंधी जगह थे जानकारी दो बा माना बहुत अच्छी लगे और मारा बा काम आवे में पूरा लाभ उठावा। तो थार बहुत बहुत धन्यवाद सा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ आपने कहना ईमेल पुग्यो है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालकाओं ईमेल पुग्यो है शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज को। गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब में आपने कहना ईमेल पुग्यो है सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गुदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। ए लिखे है कि कार्यक्रम है लाइव सुनने लाग रहा हाँ, पिछलो जो को कार्यक्रम है थे दो आवाज़ा में सुनायो माना बहुत अच्छा लागो। और पिछले सप्ताह सुरेंद्र बेनीवाल की काव्य पाठ में कविता सुनी बा माने बहुत ही अच्छी लगी। और होश कह दो कदी विनोद स्वामी जी ने भी चौपाल में थे ले गया हो तो बिल्कुल सा थाने कार्यक्रम पसंद आयो। सुरेंद्र जी बेनीवाल को काव्य पाठ थाना अच्छा लागो तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं की एक है जका हमारा जका कलाकार है बाने में टेमो टेम लियांता रहा और आगे भी ले गया वांगा। और आगे लिखेगा बाकी कार्यक्रम में किया है खेतियों संबंधी जानकारी माने बहुत ही जिकी काम आवे और गीत और गजरा में पेश होने वाला जगह लोकगीत और भजन है वह भारी परिवार का जगह लोग है और हमारी माता जी है बाने बहुत ही पसंद आवे तो आ तो बहुत ही अच्छी बात है जी। और सारू अच्छी बात आना आ लगी है कि माइड भाषा में पेश होने वालों वो कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही अच्छो है। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। अगर ईमेल आपने कहना पुग्यो है गांव रघुनाथपुरम और भेजनिया है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ए लिखे है कार्यक्रम प्रस्तुत करनिया ने हमारी तरफों गणी गणी राम राम। तो थाना भी बहुत बहुत राम राम। अगर लिखे है पत्रोत्तर जो को कार्यक्रम है वो माने बहुत अच्छो लगे और चौपाल कार्यक्रम में नियमित श्रोता हाँ और रोज़ में सुना और जकी भी जानकारी चौपाल कार्यक्रम में दी जावे माने बहुत अच्छी लगे। नवीन जी जैविक खेती पर काना राम जी बात जकी कराई वह माने बहुत ही अच्छी लगी। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। गांव 11 टीके तहसील रायसी नगर हूँ अपने कने ईमेल पुग्यो है कमलेश, दिवांशु, यशवनी, प्रियांशु, मुकेश, योगिता, ओम प्रकाश, रोशनी, देवी। ए लिखा है कि मैं चौपाल कार्यक्रम लाइव सुनने लाग रहा और जो कि थे नई नई जानकारी दियो बहने बहुत ही अच्छी लगे। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। और मुकलाऊँ अपने कने ईमेल पुग्यो है मदन बरोड, मंजू बाला, प्रीति बरोड, दिव्या बरोड, हितेश बरोड, कामना बरोड, लुभानी बरोड, आरती बरोड, अजय पेंटर, मुकेश पेंटर, राजू पेंटर, हनुमान बरोड और इमरती देवी बरोड। आ कार्यक्रम की बधाई लिखी है और आगे लिखा है कि जगह थे गीत भजन और खेती की जानकारी दियो सागी नाटक भी मैंने सुनाओ मैंने बहुत अच्छा लगा। तो तारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। तो भाई वो इंगे सागी अब टाइम है एक और थाना भजन सुनान को और इंगे बाद जगह ईमेल और संदेश जगह आयडा है वह थाने में पढ़ के सुनावागा।
1: एक तारा बिचलो

भाइयों अपने कने अगलो ईमेल पुग्यो है रेडियो श्रोता संघ रायसीनगर करूँ और भेजनिया है सुनील डाल, सोन लाल जांगिड़, प्रवीण सरावगी, नरसिंह सिंहवर, चेतन राम जोसन, वेद प्रकाश मिड्डा, धनराज बांबू और बीकानेरू।

भाइयों आपने कने अगलो कागत पुग्यो है। गांव लुदे सरू और भेजनिया है पप्पूराम घाट सतीश कुमार पूनिया आ लिखियो है कि खेती संबंधी जानकारी जी है बा माने बहुत अच्छी लागे और मारे लिए बा पूरी लाभदायक भी रहे और सागे जगह थे गीत भजन सुनाओ पे भी माने बहुत अच्छा लागे। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर अपने कने कागत पुग्यो है शिवलाल बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित हेमंत और अंजू बेनीवाल को हाँ कार्यक्रम की बधाई लिखी है। सागे राजावाड़ी अबोर पंजाबों अपने कने कागज पुग्यो है विनोद कुमार चिंपा कांता चिंपा हर प्यारी चिंपा उमेश सिंह चिंपा आकाशदीप राजेश कुमार चिंपा और ए लिखा है कि मैं चौपाल का नियमित श्रोता हाँ और सारा परिवार का लोग मैं इकट्ठा बैठ के चौपाल सुना तो तार बहुत बहुत धन्यवाद सा। सागे श्री गंगानगर अपने कने कागज पुग्यो है बजरंग लाल शर्मा।

मोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा सागे अपने कने ईमेल पुग्यो है सातुल शहरों और भेजनिया है राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। ए लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम प्रस्तुत करनिया ने हमारी तरफों घनी घनी राम राम, तो थाना भी बहुत बहुत राम राम सा। ए लिखा है कि पिछले बुधवार ने पत्रोत्तर कार्यक्रम सुने हो, जो कहूँ क्या कि माना वो बहुत ही अच्छा लागो क्योंकि मारो पत्र भी वहाँ शामिल रहे हो। और सागी ये लिखा है कि शुक्रवार 15 महीने गीतारा गजरे कार्यक्रम में श्रोताओं की पसंद का बहुत सारा गीत जगह थे सुनाया, वह माने अच्छा लग गया श्रोताओं ने थे जगह पत्र का माध्यम शामिल कराया, वह भी माने बहुत ही अच्छा लग गया। शनिवार 16 महीने खेती बाड़ी और गीत संगीत जगह है थे सुनाया, वह माने बहुत पसंद आया। सोमवार 18 महीने वेद भाई चौपाल पेश करो और बिंग माँ गीत भजन के सागे सागे अपनी माइड भाषा को जो को प्रचार प्रसार की बात करी, वह माने बहुत ही अच्छी लगी। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा, थे मारो कार्यक्रम नियमित रूप में सुनो और आगे भी यहीं सुनता रहो। कनवानी राव सरों अपना कहना ई मेल पुग्यो है किरसन सिहाग और ए लिखा है कि कार्यक्रम माने बहुत अच्छा लगे नियमित श्रोता, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। गाँव खोखरा वाली श्री गंगानगर अपना कहना ई मेल पुग्यो है विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और सगुन बरासा सगई रामजी वाला रायसिंह अपने कहना ईमेल भेजो है रणजीत राम जी कल्याणा, पवन कल्याणा फौजी को। ए लिखा है चौपाल पेश करनिया भाई ने हमारी तरफ गणी गणी राम राम, तो थाना भी बहुत बहुत राम राम सा। आगे लिखा है चौपाल कार्यक्रम में रोजाना सुना माना बहुत अच्छा लगा है, भजन बाजार भाव मौसम की जानकारी का सागर सागर खेती संबंधी जानकारी जिकी थे देव वह भी माना बहुत अच्छी लगा और हमारा काम आवे। आज खेती आवास थे कार्यक्रम में बागवानी पौधारोपण पर जमीन किया तैयार करा, जमीन की मिट्टी जांच और सरकारी वन विभाग को पौधा लेने की जिकी जानकारी दी वह माना बहुत ही अच्छी लगी। इन खातर भाई रमेश चावरिया ने भी वहाँ शुभकामना भेजी है, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। और अगलो जो कोई ईमेल पुग्यो है अमरपुरा जालू खाटू जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और ए लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम जो है वो माना बहुत अच्छा लगा है, पिछली बार जो नवीन भाई और दो आवाज़ में चौपाल पेश करो इन खातर पाऊँ बहुत बहुत धन्यवाद, तो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद सा। थे कार्यक्रम मारो यहीं सुनता रहो। गाँव गंधेलियों अपने का ईमेल पुग्यो है पालाराम सियाग, रमेश, संदीप, मोनिका, भावना, विमला सियाग और राघव सियागो। ए लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम की जितनी में तारीफ करना बीती कम है, चौपाल पेश करना हमारी तरफों बहुत बहुत राम राम और चौपाल की सारी बात माना अच्छी लगा है, खेतियों संबंधी सागी फसल बाजार भाव की जानकारी थे दो वह माना बहुत ही अच्छी लगा, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सा। कार्यक्रम ये सुनता रहो। आगे अपना कहना ईमेल पुग्यो है पाल टेलर, चिराग, दुर्गा शक्ति और सूरजमल मास्टर गो और ए भेजे रूपाणा बिश्नोया सिरसा हरियाणा, आकाशवाणी परिवार ने घनी घनी राम राम भेजी है। और आगे लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम का नियमित श्रोता हाँ, मैं नियमित रूप में चौपाल कार्यक्रम सुना, जानकारी माना बहुत पसंद आवे और आगे नाटक सुनाने की फरमाइश करी है, तो नाटक जो है वो टेमो टेम में सुनाता रहा और आगे भी थाना जरूर सुना सियाँ। लोहारू हरियाणा अपना कहने ईमेल पुग्यो है बिल्लू सिंह चिड़ालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिड़ालिया, बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार चिड़ालिया, सागी नरेंद्र कुमार चिड़ालिया। ये लिखा है चौपाल कार्यक्रम माना बहुत अच्छा लगा और दो आवाज़ा में माना बहुत ही अच्छा लगे और आकाशवाणी सूरतगढ़ का सारा कार्यक्रम माना अच्छा लगा और इन वास्ते मैं नियमित श्रोता हाँ आकाशवाणी के अंदर सूरतगढ़ का, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। तो भाइयों अब टाइम है एक और लोक भजन सुनने को, तो थाना सुनावा ओ भजन।

भाइयों अपने कने अगलो व्हाट्सअप संदेश जो आयो है वो है जोरड़ डाणी गांव बहलोल नगरों और भेजनिया है नरेंद्र जोरड़, भीमसेन जोरड़, लोकेश जोरड़, गौरव जोरड़, पुनीता जोरड़ और आरवी जोरड़। ए लिख है कि मैं चौपाल कार्यक्रम 25 साल सुन लग रहा और बी टाइम माला भाई मनसा भाई चौपाल प्रस्तुत करता, अब आवाज़ बदली है पर अंदाज आज भी चौपाल को बोई है।

तो बहुत बहुत धन्यवाद सा। आगे लिखा है कि इन कार्यक्रम में दिए जाने वाली खेती संबंधी जानकारी में बहुत लाभान्वित हुआ और सागे राजस्थानी लोग की जगह थे सुनाओ वह माने बहुत अच्छा लगे और बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी बहुत ही सटीक रहे। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। थे मारा नियमित श्रोता हो, मारो कार्यक्रम सुनो, आगे भी यहीं सुनता रहो। गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा अपने कहने व्हाट्सअप संदेश प्राप्त हुए और भेजनिया है राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। यह लिखा है आकाशवाणी सूरतगढ़ में प्रसारित कार्यक्रम माना बहुत अच्छा लगे और पत्रोत्तर जो है वो भी माना बहुत पसंद आवे और कार्यक्रम यहाँ बढ़ाई लिखी है। आगे अपना कहना है जो को अगलो संदेश जो को आयो है वो भोपालगढ़ राजस्थान है, भेजनिया धर्मेंद्र छिंपा और कपिल छिंपार सागी पूजा परिहार है। यह लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम में नियमित रूप सुना और बेहतरीन प्रस्तुति के सागे एक कार्यक्रम हुए और विशेषकर चौपाल जको किया गया मैं बहुत ही चाहूँ सुना जखम के श्रोताओं की जका विचार है वह भी पेश कराया जाए अच्छा लगे और सागी कृषि संबंधी जानकारी और मौसम संबंधी जानकारी के सागे जका थे जानकारी साझा करो वह भी माने बहुत ही अच्छी लगे। तो धन्यवाद सा। गाँव अरायण अपना कहना है संदेश फूग्यो है और भेजनिया है डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम और आगे लिखे है कि नवीन सिसोदिया रोहतास और वेद प्रकाश तीन आवाज़ में माने बहुत ही अच्छो लगा कार्यक्रम और इन दिन सिसोदिया जी की प्रगतिशील किसान कानाराम बुआल सागे भेंट वार्ता जैविक खेती रो महत्व माने बहुत ही अच्छी लगी और बूंद बूंद सिंचाई पर जानकारी जरूर दियो, सोलर पंप पर भी थे कोई महत्वपूर्ण जानकारी दियो और चौपाल पेश करनिया ने मारी तरफों घनी घनिया राम राम भेजिए। तो थाना भी बहुत बहुत राम राम साहब और थाना में बता दें कि बूंद बूंद सिंचाई और जैविक खाद पर किया गया टेमो टेम पर किया मैं जानकारी देता रहा तो थाना आगे और भी जानकारी आज जरूर देवांगा। गाँव जैसला फलोदियों अपने संदेश पुग्यो है, भेजनिया है राजा राम जंवर बिश्नोई। ए लिखे चौपाल कार्यक्रम में गीत भजन और विविध जानकारियाँ जगी थे देव वह माने बहुत अच्छी लगे और सागे गर्मियों में पशुओं की देखभाल पर जानकारी माने थे दिलाओ बिल्कुल सा टेमो टेम पर मैं जानकारी थाने पशुओं पर दी भी है और आगे भी गर्मियों में पशुओं की देखभाल पर जानकारी मैं थाने जरूर देवांगा। फाजिलका पंजाब हूँ अपने कने संदेश पुगे है विशाल खेड़ा विशु खेड़ा लड्डी खेड़ा सलानी खेड़ा तिवानसी खेड़ा वाणी खेड़ा और आर बी खेड़ा आ कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है धन्यवाद सा। मेरठ कैंट हूँ अपना कहना है ईमेल पुग्यो है दिग्दर्शन कविता गोड़ और अंग परिवार के सदस्यों को यह लिखे कार्यक्रम दी जाने वाली जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक हो है और इन खातर किया कि मैं थाना धन्यवाद देवा। तो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद सा। नियमित श्रोता हूँ हमारा और बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल वर्मा ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ अपना कहना संदेश फूकी हुआ आंगो और यह लिखे है कि चौपाल कार्यक्रम माना बहुत अच्छा लगा खेती की जानकारी बेहतरीन ढंग किया थे बताओ वह हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित हुए। तो थारो धन्यवाद सा। और अगलो अपना कहना ईमेल फूक्यो है गाँव बुर्ज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका पंजाब हूँ भेजनिया है अमन वर्मा रमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा और अंग परिवार का लोग सागी 14 PSB हूँ कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज वीरक भी अपना कहना ईमेल भेजो है आ कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है और लिखा है मैं नियमित श्रोता हाँ खेती संबंधी जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहे है। तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा। थे हमारा कार्यक्रम जो है वो नियमित रूप सुनो और भाइयों अब टाइम है एक राजस्थानी रचना सुनाने को थाने तो थाना सुनावा आ रचना

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बींजवायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
1: भाई अपना अनाज बाजार भाव भी है तो बंगी बात थाना बता दें तो सुरतगढ़ अनाज मंडी का आज का भाव कणक का रहा 2370 लेके 2561 रुपया प्रति क्विंटल। जौ का भाव रहा 2140 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा 6400 लेके 7409 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव रहा 5291 रुपया लेके 2621 रुपया प्रति क्विंटल। सागे गंगानगर अनाज मंडी के भाव की बात करें तो सरसों का भाव रहा 6800 लेके 7581 रुपया प्रति क्विंटल। जौ का भाव रहा 2160 लेके 2290 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 5350 लेके 5680 रुपया प्रति क्विंटल। कणक का भाव रहा 2405 लेके 2962 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव रहा 4751 लेके 5651 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग का भाव रहा 5571 रुपया प्रति क्विंटल। और सागे सागे किसान भाइयों मैं थाने बता दिया कि आज को मारो पत्रोत्तर कार्यक्रम इतो ही और मारो ईमेल पतो जो को है वो थाने मैं बता दिया। मारो ईमेल पतो है AIRSURATGARHCHOPUL@gmail.com। और सागे कागज भेज रहा हूँ मारो पतो है पत्रोत्तर चौपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सूरतगढ़ और मारा पिन कोड नंबर है 3358 04। इंगे सागे वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। प्रस्तोता थे वेद प्रकाश वर्मा। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सुनो अभी आपने गीत आवाज़ें आकृति कक्कर और मोनाली की, फिल्म का नाम बिल्लू। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू की और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम है कुली नंबर 1।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जहां हम बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्होंने न सिर्फ सिनेमा के इतिहास में एक खास मुकाम बनाया, बल्कि जिनकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि इतिहास बन जाती हैं। ये फिल्में अपने शानदार संगीत, दमदार अभिनय और यादगार कहानियों से दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेती हैं। और आज हमारे इस खास सफर में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी फिल्म की दुनिया में जिसने सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। तो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है मुगले आजम। दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय है। एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि अपनी भव्य

होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि इतिहास बन जाती हैं। ये फिल्में अपने शानदार संगीत, दमदार अभिनय और यादगार कहानियों से दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेती हैं। और आज हमारे इस खास सफर में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी फिल्म की दुनिया में जिसने सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। तो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है मुगले आजम। दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय है। एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि अपनी भव्यता और कहानी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। दोस्तों, इस फिल्म को पूरा करने में लगभग 16 साल का समय लगा था। 1944 में इस फिल्म की योजना बनाई गई थी लेकिन इसकी शूटिंग 1950 में शुरू हुई और 1960 में जाकर पूरी हुई। फिल्म का प्रसिद्ध गीत प्यार किया तो डरना क्या, ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था। इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष स्टूडियो बनाया गया क्योंकि गाने में इको का प्रभाव लाना था। इस गाने के दृश्य में अनारकली को जो जेल में दिखाया गया है वह असली जेल थी। सेट को और अधिक प्रामाणिक दिखाने के लिए निर्देशक के आसिफ ने वास्तविक जेल का निर्माण करवाया था।

दोस्तों इस फिल्म में सलीम का किरदार दिलीप कुमार ने निभाया, लेकिन इस भूमिका के लिए राज कपूर को भी प्रस्ताव दिया गया था। शहंशाह अकबर के दरबार का जो दृश्य दिखाया गया, उसमें दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को तैयार करने में कलाकारों को लगभग 6 महीने लग गए थे। दिलीप कुमार ने उस समय के हिसाब से एक बड़ी फीस ली थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ था, जो उस समय किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें कुछ दृश्य रंगीन थे। 2004 में फिल्म को पूरी तरह से रंगीन किया गया और दोबारा रिलीज किया गया था।

दोस्तों, इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए उर्दू संवाद बेहद कठिन और क्लासिक थे। इन्हें लिखने में अमन और एहसान मिर्जा ने काफी मेहनत की थी। नौशाद ने फिल्म का संगीत दिया, जिसमें उन्होंने क्लासिकल रागों का इस्तेमाल किया। 2013 में इसे 100 वर्षों के भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शामिल किया गया। इस फिल्म को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में एक शाश्वत कृति के रूप में संरक्षित किया गया है।

फिल्म के युद्ध दृश्य लाल किले के प्रांगण में फिल्माए गए, जहां भारी संख्या में सैनिकों और युद्ध सामग्री का उपयोग किया गया। फिल्म के सेट इतने भव्य थे कि उन्हें बनाने में महीनों लग जाते थे। मोहे पनघट पे इस गीत के लिए मधुबाला को भारी पोशाक पहननी पड़ी, जिसका वजन 30 किलो था। इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी शिकायत के इसे पहनकर शूटिंग की। मधुबाला द्वारा पहने गए आभूषण असली सोने और हीरों से बने थे। उनकी वेशभूषा इतनी भारी थी कि कभी कभी उनको चलने में भी दिक्कत होती थी। गानों के सेट को शीश महल के रूप में बनाया गया, जिसमें कांच की सजावट थी, और सेट बनाने में इतने शीशे लगे कि वह भारत में पहली बार देखा गया था।

शूटिंग के दौरान मधुबाला को दिल की बीमारी थी, फिर भी उन्होंने अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया। फिल्म के संवाद शकील बदायूनी और कमाल अमरोही ने लिखे, जो शाही उर्दू में थे। यही संवाद फिल्म की जान बन गए। 1961 में फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंतर्गत यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में के आसिफ, सर्वश्रेष्ठ छायांकन आर डी माथुर, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन एम आर आचरेकर रहे।

हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये फिल्मी यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई ऐसी फिल्म है जिसे आप हमारे शो में सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं पुष्पेंद्र आपसे यही कहूंगा कि फिल्मों से जुड़ी यादों को हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखें। मिलेंगे अगली बार एक और यादगार फिल्म के साथ, सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। आज की फिल्म थी मुगले आजम। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत के इस जादू का आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी सूरतगढ़। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताज़ा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की पूरी खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की।

बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। कल राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक अपने नाम किया। आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीता। रूपा बायन ने 9वीं एशियाई टाइकंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैच जीतना भी चाहती है और उसके बाद उसको अन्य कुछ टीमों के परिणामों पे भी काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। और इससे पहले कल राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की। सुनते हैं इस मैच पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
1: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल युवा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर राजस्थान अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने की सबसे मजबूत दावेदार बन रही है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मिचेल मार्श ने जॉश इंग्लिस के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों में 109 रन की शानदार साझेदारी की। इंग्लिश 29 गेंद में 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मिचेल मार्श थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुए और सिर्फ 4 रन से शतक से चूक गए। मार्श ने 57 गेंद में 96 रन की पारी खेली। आरआर से यश राज ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया। करो या मरो के मुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 75 रन की साझेदारी की। जायसवाल 23 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंद में 105 रन जुटाए और टीम की जीत की राह आसान कर दी। सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभालते हुए 38 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। लखनऊ की ओर से आकाश महाराज और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब अगर रॉयल्स की टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन जाएगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि वैभव की इस तूफानी पारी ने प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया। और प्लेऑफ के सभी समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमल मौजूद हैं स्टूडियो में। कमल, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है और चौथी टीम अब तक आईपीएल को मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या कहते हैं आपके समीकरण?
2: जी शक्ति, बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल में जो जद्दोजहद इतने लंबे दिनों तक मैचों की होती है वो प्लेऑफ की ही रेस के लिए होती है, और प्लेऑफ की रेस के लिए हमारे सुनने वाले सभी इस बात को जानते ही हैं कि जो हमारी तीन टीमें हैं वो पहले ही इस प्लेऑफ में अपनी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत कर चुकी हैं। लेकिन अब जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो है चौथे पायदान के लिए। तो चौथे पायदान में जो मजबूत दावेदार है, जैसा कि अभी हमने इस खास रिपोर्ट में भी प्रशांत जी की सुना कि जो कल का मैच रहा, हालिया जो राजस्थान रॉयल्स की जीत रही और 14 अंक उन्होंने इस जीत के साथ हासिल कर लिए हैं, तो सबसे मजबूत दावेदार तो वही समझी जा रही है। और उसके बाद जो और टीमें बचती हैं, जिसमें पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये भी गणितीय रूप से तो अभी दावेदार बनती ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि 13 अंक हमारे पास अभी पंजाब किंग्स के हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के 12-12 अंक हैं। तो देखना होगा शक्ति कि कौन सी टीम अभी दावेदारी करती है, लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स की दावेदारी अभी मजबूत नज़र आ रही है। अगर हम ऊपर की टीमों की बात करें, तीन जो टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो उनके 18 अंक हैं, सबसे ऊपर की जो मजबूत टीम है वो पहले ही समझी जा रही थी, और उनके प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने अपने

0: अपनी मजबूत दावेदारी पहले नंबर पर हासिल की है। दूसरा जो सनराइजर्स हैदराबाद है और उसके अलावा जो तीसरी टीम गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद है, ये दोनों टीमें बराबर बराबर 16-16 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर यानी बराबरी पर ही हैं। तो खैर अब देखते हैं कि आगे आने वाला जो चौथा नंबर का पायदान है वो कितना रोमांचक होता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती है।
1: जी बिल्कुल कमल, 5 मैच बचे हैं और चौथी टीम की तलाश है, तो दिन तो ज़्यादा नहीं बचे हैं लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी इस सीज़न को अपनी चौथी प्लेऑफ की टीम भी मिलते हुए नज़र आएगी। और अब क्रिकेट के बाद चलते हैं एक ऐसे रोचक खेल की तरफ जिसने सबका ध्यान अपने उत्साह से अपनी तरफ मोड़ा है और भारतीय टीम ने कल कुआलालंपुर में सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
2: कुआलालंपुर के टिटवांगसा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा लेकिन टीम ने पूरी प्रतियोगिता में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रजत पदक अपने नाम किया। भारत को हराकर मलेशिया ने पहली बार सेपेक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए ग्रुप मुकाबले में भी मलेशिया ने भारत को हराया था। भारत को फाइनल मुकाबले में मलेशिया से 15-17 और 10-15 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस फाइनल मुकाबले में जुझारू प्रदर्शन दिखाया लेकिन वे रजत पदक की चमक को सोने में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि भारत ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत ने सेमीफाइनल में म्यांमार को 2-1 से हराया था जबकि मलेशिया वियतनाम को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे पर 2-0 से जीत दर्ज की थी। किक वॉलीबॉल और फुट वॉलीबॉल के नाम से प्रचलित सेपक टकराव मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का एक रोमांचक खेल माना जाता है। यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक अनूठा मिश्रण है जिसमें खिलाड़ी हाथों का उपयोग किए बिना केवल अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर की मदद से गेंद को नेट के पार भेजते हैं। जहां मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा, संतुलन और शरीर के लचीलेपन का एक शानदार तालमेल देखने को मिलता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी एक शानदार तालमेल जहाँ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, हुनर और टैलेंट का भी तालमेल दिखाते हैं और ऐसा ही कुछ तालमेल कल फुटबॉल के मैदान पर देखने को मिला जहां आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं आर्सेनल की जीत पर ये डिटेल्ड रिपोर्ट।
3: आर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच कल 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद आर्सेनल को विजेता घोषित किया गया। कल इंग्लैंड के वाइटालिटी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पेप गार्डियोला की टीम को खिताब रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी लेकिन बॉर्नमर्थ के शानदार प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच का सबसे अहम पल 39वें मिनट में आया जब 19 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी एली जूनियर क्रूपी ने शानदार गोल कर बॉर्नमर्थ को बढ़त दिलाई। एड्रियन ट्रफर्ट के पास पर क्रूपी ने बेहतरीन पहला टच लिया और फिर एक कर्विंग शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने बराबरी का गोल कर सिटी की वापसी के साथ ही जीत की उम्मीदें जगाई थी लेकिन मैनचेस्टर की खुशी अधिक समय तक नहीं रह सकी। कुछ ही सेकंड बाद मैच समाप्त होने की घोषणा हुई। आर्सेनल और मैनचेस्टर को अब 1-1 मुकाबला और खेलना है लेकिन 4 अंकों की बढ़त के कारण आर्सेनल को विजेता घोषित कर दिया गया है। आर्सेनल के मुकाबला हारने या मैनचेस्टर के मुकाबला जीतने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिकेल आर्टेटा की अगुवाई में आर्सेनल ने शानदार खेल दिखाया। सीजन में आर्सेनल ने कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड भी बनाया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच हुए मैच के ड्रॉ होने की खबर आते ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर हजारों आर्सेनल समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब आर्टेटा की टीम के पास इतिहास रचने का एक और मौका है। आर्सेनल 30 मई को बुडापेस्ट में यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 2025 में पेरिस सेंट जर्मेन एफसी से मुकाबला करेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो यही फुटबॉल की लीग की वो दुनिया है जहां पे रोज सैकड़ों कीर्तिमान बनते हैं और सैकड़ों कीर्तिमान टूटते हैं। और अब फुटबॉल के बाद चलते हैं बैडमिंटन की तरफ जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत के लिए आज का दिन कुछ अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ नहीं नज़र आया। और अगर देखा जाए तो अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की मुख्य उम्मीद लक्ष्य सेन और एच एस प्रणॉय का सफर आज इस

0: प्रतियोगिता में समाप्त हो गया। और अब इस उम्मीदों की डोर को लेकर चलते हैं उलान बटोर की तरफ, जहां रूपा बायर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित 9वीं एशियाई टाइकंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ बायर ने एशियाई टाइकंडो चैंपियनशिप में लगातार दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार पदक के साथ रूपा ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि वे एशियाई खेलों 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। इस उपलब्धि के बाद हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला ने रूपा से बातचीत की, जहां रूपा ने इस प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव हमसे साझा किए।
1: नमस्कार रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, थैंक यू।
1: इन 9th एशियन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए आपको बधाई।
2: थैंक यू सो मच आप सभी को।
1: किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
2: एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने 8 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, और आफ्टर 2 ईयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे तो ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है।
1: किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
2: तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था, क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उसपे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है।
1: आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है।
2: ताइक्वांडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, इसमें डिफरेंट वही है कि ताइक्वांडो में क्यूरिगी और पुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है, बट पुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में।
1: इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है?
2: अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी है वापस जाएंगे इंडिया जाने के बाद मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से। अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग का हिसाब से अभी होंगे तो और अच्छा रहेंगे। अभी जाएंगे वापस, फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है शेड्यूल है उस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है।
1: आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
2: भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है, तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका भी रूपा। और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ी आप और आपने अपने अनुभव साझा किए, और ये दूसरा मौका है जब आप जुड़ी हैं, और ये दूसरी उपलब्धि है जब आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, और हमें उम्मीद होगी कि आप आगे भी ऐसे ही कुछ और पदक जिनकी चमक इससे और ज़्यादा उज्ज्वल हो उनके साथ देश का नाम रोशन करें और हमारे कार्यक्रम के साथ अपने अनुभव साझा करती रहें। और इसी तरह की एक उपलब्धि हॉकी की फील्ड से कोच बलदेव सिंह ने हासिल की है, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास स्थित एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को हॉकी का एक एपिसेंटर बना दिया है, जहां से खिलाड़ी आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक पे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन लेकर के इस लजिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन पे भी बात की जाएगी हमारे आने वाले अंक में। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com यानी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन

0: सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से

0: ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो दो साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal.

0: Delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honour to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security.

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फेहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ

0: द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा

0: सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्या

0: समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
1: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे, जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down. And grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
0: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
0: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफ़ी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
1: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट

0: या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने यह बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly,

0: Absolutely. This is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का। हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
3: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
3: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मन भवन। निर्देशक व संयोजक हैं नवीन सिसोदिया, प्रस्तोता हैं विकास पारेख।

हेलो मन भावन के सभी श्रोताओं को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपके फोन कॉल्स लेने से पहले याद करें फिल्म जगत के महान संगीतकार हंसराज पहल को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आपने

हिंदी गीतों के साथ साथ पंजाबी गीतों को भी अपने संगीत से सजाया। हंसराज बहल एक ऐसे सुर साधक जिनकी रचनाओं में भारतीय मिट्टी की खुशबू, लोक संगीत की आत्मा और भावनाओं की गहराई बसती थी। आपने अपने संगीत से फिल्मों को केवल धुने ही नहीं दी बल्कि एहसास दिए, ऐसे गीत दिए जो आज भी हर दिल की धड़कन है। आपने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म पुजारिन से की। 1964 में आपने पंजाबी फिल्म सतलुज दे कंधे के लिए संगीत दिया। आपने दो आंखें, मोती महल, दोस्त, सावन और सिकंदर आजम जैसी फिल्मों के गीतों को संगीतबद्ध किया। आज ही के दिन 1984 को आप इस दुनिया से अलविदा हो गए। आज के कार्यक्रम में आपके संगीतबद्ध गीत से आपको याद करें और श्रोताओं के फोन कॉल्स का इंतजार करें।

जो आज भी हर दिल की धड़कन है। आपने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म पुजारिन से की। 1964 में आपने पंजाबी फिल्म सतलुज दे कंधे के लिए संगीत दिया। आपने दो आंखें, मोती महल, दोस्त, सावन और सिकंदर आजम जैसी फिल्मों के गीतों को संगीतबद्ध किया। आज ही के दिन 1984 को आप इस दुनिया से अलविदा हो गए। आज के कार्यक्रम में आपके संगीतबद्ध गीत से आपको याद करें और श्रोताओं के फोन कॉल्स का इंतजार करें।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, लाल जी कैसे हैं?
1: ठीक है विकास जी, बहुत अच्छे हैं। और एक लगभग 1-1.5 महीने के बाद फोन मिला है।
0: बहुत बढ़िया, नियम आपने बना रखा है लालचंद जी कि सभी श्रोताओं को मौका मिले, इसलिए हमने भी ये प्रयास किया है कि 1 महीने तक किसी के भी कॉल रिपीट ना हो।
1: और ये आप लोगों ने नियम बनाया ना, इसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो हर साथ में भी फोन करते थे,
0: बिल्कुल
1: उनके लिए अच्छा संकेत है। हमें तो 1 महीने 1.5 महीने बाद समय मिलता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि 1 महीना तो कम से कम हम दूरी बनाए रखें आपसे, फोन इन पर वैसे रेडियो से दूरी नहीं बनाते।
0: बिल्कुल, जिससे सभी श्रोताओं को मौका मिल सके।
1: हाँ जी, सभी श्रोता ब्रोकर आज मैंने रात भी सुना था, बहुत से हमारे नए श्रोता होते हैं, पिछले बुधवार को भी सुना था, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि हमारे बहुत से श्रोता जो अभी तक हमसे पिछड़े हुए थे वो पुनः हमारे साथ जुड़ गए।
0: चलो अच्छी बात है। तो आज कौन कौन है आपके साथ?
1: आज मेरे साथ है जी मेरे पिताजी श्री दीननाथ कछवा, मेरे छोटा भाई प्रेम, सोहन मेरे घर से मंजू, अमन, अंकुश, बाहू, ब्रिटा, दीपक, पीयूष, योगेश नाथ और नगराना धनी से श्री ओम प्रकाश सुतार और उनके दो लड़के देवेंद्र कुमार और राजीव कुमार।
0: क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: इन सभी को आज हम सुनवाएंगे हंसराज गोयल, एक संगीतकार है, आज उनकी पुण्यतिथि है।
0: बिल्कुल सही कहा, हम उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: 1984 को हमसे विदा हो गए थे, तो इनका एक बेहतरीन गीत है फिल्म सिकंदर आजम का,
0: बिल्कुल,
1: जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है वसीरा, वो भारत देश है मेरा।
0: बहुत अच्छा गीत आपने चुना है लालचंद जी, और इस गीत से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें हंसराज बहल साहब को। सुनवाते हैं आप सभी को आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो मन भवन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रहे हैं?
1: हजारीलाल पुरोहित बोल रहा हूँ जी, हीरामली फाजिलका पंजाब से।
0: हाँ जी, हजारी जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया जी।
0: आप तो हमारे केंद्र के नियमित श्रोता हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: क्या कर रहे हैं हजारी जी आजकल?
1: बस जी आजकल तो बस खेती में तो बस छुट्टियां सी की है, कोई कार्य नहीं है।
0: आकाशवाणी सूरतगढ़ के प्रोग्राम आप सुनते हैं?
1: हाँ भरपूर आनंद, भरपूर ही प्रोग्राम आपके पेश किए जाते हैं, सूरतगढ़ पर ही रहते हैं सारा दिन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यूं ही हमारे केंद्र से जुड़े रहें। आज आपके साथ इस कार्यक्रम के लिए कौन कौन है?
1: मेरे साथ तो मेरी घरवाली है, मोनी पारी के बेटा भूपेंद्र पुरोहित, सुभाष जी गोदारा है और सरवंजी रणवा भी है।
0: क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: आज दिल फिल्म का गीत सुना दीजिए जी, मुझे नींद ना आए मुझे चैन पाए।
0: सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: सर जी
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: अरे नमस्कार जी, राजकुमार जी कैसे हैं?
0: सर जी विकास पारिक जी बोल रहे हो?
1: बिल्कुल राजकुमार जी, हमने भी आपको पहचान लिया और आपने भी हमें पहचान ही
0: हाँ
1: लिया।
0: जी। और सर जी ठीक
1: बहुत
0: हो?
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया है यार। आपसे बात करके यकीन मानिए और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: स्टुटगार्ट में भी सब ठीक है जी? सर
1: सब कुछ ठीक है,
0: जी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हमें इस गर्मी से बचाव जरूर करना है, अपना, हमारे बुजुर्गों का और बच्चों का।
0: पारा भी 45 डिग्री के पार हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप?
0: सर जी हमारे पहले तो बस स्टैंड पर छबीलें लगती थी,
1: जी
0: अब की बार गली गली में बाजार बाजार में पानी के कैंपर रख के पानी पिला रहे हैं, सेवा
1: बहुत नेक काम कर रहे हैं राजकुमार जी आप।
0: कर रहे हैं जी, ताकि गर्मी से रात कुछ आने पीने वाले को लगे। बस सर जी आज आपको हमारे को फिल्म आदमी खिलौना है का गाना सुनना जी।
1: लेकिन आपके साथ कौन कौन है, उनके नाम पहले बता दें।
0: हमारे पास है जी राजकुमार ठठई, कमल ठठई, आकाश ठठई, शोक मित्तल, तारा चंद जी दायमा, मुंशी राम जी महेंद्रा, हीरा लाल जी गजरा, किकरवाली गांव से सरपंच बलवंत राम जी, बाबा हंसनाथ, मदन काठपाल, आठ हजानी से बाबूलाल जी चक्की वाले, कृष्ण चरण, 33 बीवी से हरीश कुमार जी मिगलानी, 18 लाठी से गुरबचन सिंह भट्टी।
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
0: हाँ जी सर जी बिल्कुल सभी
1: सुनवाइए इन सभी को आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी।

0: हेलो, नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडी की सोचा था बस तेल वंडा वेले चले छोटे को चाय वाले वो पे सर कैसे हो आप।
0: बहुत बढ़िया है। कहाँ से फरमा रहे हैं?
1: वंडा वेले जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: लक्ष्मण जी क्या कर

0: हैं आप?
1: चाय की दुकान है सर?
0: ठीक चल रहा है काम?
1: हाँ ठीक है, आप लोगों की कृपा से भगवान कर।
0: देखो, कृपा ईश्वर की बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि को चलाने वाले तो वही हैं। कार्यक्रम हमारे कौन कौन से सुना करते हैं आप?
1: आपके लोकगीत के कार्यक्रम आते हैं, युवाओं के लिए कार्यक्रम आते हैं, सब सुनते रहते हो, फार्मेसी कार्यक्रम सुनते रहते।
0: आज आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम में?
1: आज हमारे दोस्त रहे गजराज लोधी, मांगीलाल चंदन, बसंतीलाल सूर्यवंशी, रोहन कटारी।
0: क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: आज हम दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल
0: सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रहे हैं?
1: हाँ जी, मैं नॉर्थ से बोल रहा हूँ, रामनिवास सोसाइटी।
0: रामनिवास जी कैसे हैं?
1: बिल्कुल सही है सर, आप सुनाइए।
0: बहुत बढ़िया हैं। क्या करते हैं रामनिवास जी आप?
1: मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ सर।
0: तो अभी तो विद्यालय में छुट्टियां चल रही होंगी।
1: हाँ जी, हाँ जी, तभी तो आज आपका फोन मिला है फिर।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, इन गर्मियों की छुट्टियों में हमारे लिए भी आपने वक्त निकाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: कब से आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: वैसे तो सर बचपन से ही सुन रहा हूँ।
0: जी, इस कार्यक्रम में पहली बार फोन लगाया ना आपने?
1: हाँ, फोन सर पहली बार ही लगाया मैंने, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो फोन उस टाइम तो लग नहीं सकता।
0: चलो, छुट्टियों का दोहरा फायदा हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इस कार्यक्रम में आपके साथ कौन कौन होते हैं जब आप कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: वैसे मेरी पत्नी और बच्चे सर।
0: नाम लेना चाहेंगे उनके?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताएं।
1: मेरी पत्नी का नाम है जी सुनीता सुथार,
0: जी,
1: और बेटा अंकित, और बेटी ज्योत्ना।
0: तो इन सभी को कौन सा गीत सुनवाएंगे आज?
1: दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई।
0: सुनवाते हैं हम आप सभी को आपकी पसंद।

0: हेलो, कार्यक्रम हेलो मन भावन।
1: हेलो सर, नमस्ते
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रही हैं?
1: सर। मैं श्रीवास्तव कवाई सालपुर जिला राजस्थान से बोल रही हूँ।
0: कवाई सालपुरा से?
1: जी सर,
0: हमेशा सतीश जी फोन करते हैं, इस बार आपने फोन किया है।
1: आज मैंने बोला था मुझे करने दो बात, आप तो कर भी देते हो।
0: चलो अच्छी बात है, आपसे हम मुखातिब हुए। चलो अच्छी बात है, इस बार आपने फोन लगाया। तो आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम में?
1: और सर आपके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं हमें।
0: शुक्रिया बहुत बहुत आपका। क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भवन में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: नमस्कार जी, मैं रूहानी अरोड़ा।
0: रूहानी जी,
1: हाँ जी,
0: क्या कर रही हैं आजकल?
1: आजकल गर्मी की छुट्टी है, घूमने का प्लान हो रहा है, मायके जाना। अभी
0: फोन मायके से कर रहे हैं या ससुराल से?
1: घर पे है, आउट ऑफ स्टेशन है, ससुराल भी जाना है, मायके भी जाना है।
0: यानी छुट्टियों में घूमने गए हुए हैं
1: हाँ जी,
0: और वहीं से आपने फोन किया है।
1: हाँ जी,
0: तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगी और किस किस को सुनवाएंगी वो भी बता दें।
1: बच्चे शौक से सुनते हैं रेडियो आपका, फैमिली भी सुनती है। मैं आज वो बोला हम साथ साथ मूवी का गाना है, छुट्टियों के दिन है सुहाने।
0: नाम लेना चाहेंगी कोई?
1: बच्चे हैं हार्दिक कार्तिक, जो बड़े शौक से रेडियो सुनते हैं आपका।
0: सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो मन भवन,
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भवन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रहे हैं?
1: मैं आपका पुराना श्रोता मुकेश बोल रहा हूँ, रामगढ़ से। टीचर
0: क्या करते हैं मुकेश जी आप?
1: हूँ, शाम स्कूल बादराम में।
0: तो अभी विद्यालय की छुट्टियां चल रही हैं।
1: हाँ, विद्यालय की छुट्टियाँ चल रही है।
0: जी,
1: पहली बार आपके पास कॉल लगा है अभी।
0: पहली बार आपका फोन इस कार्यक्रम में लगा है।
1: हाँ जी, वैसे पत्रोत्तर में तो हमारे शुरुआत सन 1993 से जो बाल वाटिका आती थी ना,
0: जी
1: बाल वाटिका प्रोग्राम है, उसके बाद बहुत सारे युवाणी में भी ज्ञान का नाम का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, सामान्य ज्ञान का।
0: ज्ञान लोक।
1: उसमें भी, हाँ ज्ञान लोग, उसमें भी हमारे प्रश्न उत्तर आते थे,
0: जी
1: और जब हम बच्चे थे ना, बाल वाटिका में भी हमारे पत्र उत्तर आए हैं।
0: चलो, बहुत पुराने श्रोता हैं आप हमारे केंद्र के।
1: हाँ बिल्कुल, पुराने श्रोता हैं जी। जब से, जब 9 बजकर 20 मिनट तक कार्य होता था, पहली पंक्ति में और दूसरी में 12:30 से, और फिर 5:30 से जो प्रोग्राम आते थे ना, उस समय से ही।
0: यकीनन ये जानकारी देकर के आपने बता दिया कि आप बहुत पुराने समय से आप हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं।
1: मेरे को पूरा टाइम टेबल सर, 6:10 पर वंदना, 6:45 चिंतन, 7:00 कार्यक्रम विवरण, 7:20 मानस गान, एक ऐसा प्रोग्राम है आपका जिसका समय आज तक बदला नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपके साथ कार्यक्रम में कौन कौन है?
1: मेरे साथ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं घर के सदस्य, सारे बैठे हुए हैं मेरे पास।
0: नाम बताएं
1: और
0: उनके।
1: अभी घरवाली का नाम सुमन है, मेरे पिताजी भी बैठे हैं हनुमान जी,
0: जी,
1: और मैं तो मुकेश हूँ ही।
0: क्या सुनवाएंगे इनको आज?
1: रफी साहब के फैन है सर हम, तो
0: जी, तो रफ़ी साहब का कोई भी गीत सुनवा दें।
1: रफी साहब का कोई भी गीत सुना देना।
0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो मन भवन।
1: जी। हाँ जी सर, धन्यवाद सर जी, लखोली से बात कर रहा हूँ,
0: हाँ जी, लखोली हट से कौन फरमा रहे हैं?
1: मोहम्मद रफीक बोल रहे।
0: हाँ जी रफीक जी, कैसे हैं?
1: रहते हैं सर जी, खेत में पानी जा रहे हैं नरमे को।
0: कौन कौन है आपके साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए?
1: मेरे साथ में नरेंद्र है और भवनलाल मास्टर जी है।
0: क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: आज कोई पुरानी फिल्म का गीत सुना दो सर जी।
0: सुनवाते हैं हम आपको हमारी और हमारे श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: हेलो, नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है।
1: सर जी, उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के बीबीपुर से इमरान खान बात कर रहा हूँ सर जी।
0: मुरादाबाद से इमरान खान जी बोल रहे हैं।
1: जी सर। हाँ
0: पहली बार आपका फोन हमारे इस कार्यक्रम में लगा है शायद।
1: सर, मैं एक फिल्म है अनपढ़, उसमें बहुत ही प्यारा गीत है, परदेश जाकर परदेश भूल न जाना।
0: सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है।
1: जी, बड़ी मुश्किल से मेरा कॉल लगा है आज मेरा।
0: कौन फरमा रही हैं?
1: मेरा नाम कविता है, मैं बूंदी से बोल रही हूँ।
0: बूंदी से कविता जी,
1: जी
0: कैसी हैं कविता जी?
1: जी अच्छी हूँ मैं। आपके सूरत गढ़ के प्रोग्राम जी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: पसंद आते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: जी जी मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आते हैं वो भी थोड़ा बताएं।
1: मैं युवाणी प्रोग्राम भी सुनती हूँ और फिल्म संगीत के मन भावन गीत गंगा गोरवन अधिकतर सुनती हूँ। ये मुझे कुछ सारे पसंद आते हैं
0: कौन कौन होते हैं आपके साथ जब आप ये कार्यक्रम सुना करती हैं?
1: जी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है, और जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अक्सर अकेले सुनती हूँ
0: कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगी?
1: जी। मेरा गीत है चांद से पर्दा कीजिए, और मैं अपने कुछ साथियों के नाम लेना चाहूंगी।
0: बिल्कुल लीजिए।
1: हाँ जी, मेरे साथी हैं मोनिका जैन और स्मृति, शोभा जी, रैना जी, चरण जी, सुल्तान जी, भूपेन सुतार जी, गुलशन रोहिता जी और नरेश जी, कुंदन जी, श्रीपाल जी और वंदना जी, रैना जी, बहुत से साथी हैं।
0: सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी। सुरेंद्र बोल रहा हूँ, अजमेर से। सर,
0: हाँ जी सुरेंद्र जी, आवाज़ पहचान गए हम आपकी।
1: एक बात कहनी पड़ेगी कि
0: बोलें
1: आपका जो हेलो मन भवन है ना,
0: जी।
1: इसका नहीं, मेरे अलावा जितने भी श्रोता है ना, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं।
0: ये आपका हमारे केंद्र के प्रति प्रेम है, लगाव है।
1: और सर, आपके केंद्र की एक बात कहनी पड़ेगी कि आपके जितने भी प्रोग्राम है वो बहुत सटीक और बहुत बढ़िया है।
0: पसंद आ रहे हैं ना आपको?
1: जी बिल्कुल।
0: बस तो यकीन मानिए कि हर जो अनाउंसर है उसकी मेहनत सफल हो जाती है यदि श्रोताओं को उनके कार्यक्रम पसंद आते हैं तो।
1: और सर, एक बात और कहनी पड़ेगी कि शिवपाल जी ने रात को जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया, उनके लिए केंद्र को और उनके पीछे जितने भी जो काम कर रहे थे, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
0: धन्यवाद उन तक प्रेषित हो जाएगा। आज आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम में?
1: हमारे साथ में जीवन साथी है आशा देवी
0: जी
1: और हमारा पूरा पडियार परिवार।
0: तो क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: एक बहुत अच्छा गीत है, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ है, मीत ना मिला रे मन का।

0: हेलो, हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: अहमदाबाद गुजरात से बोलते हैं सर,
0: क्या
1: करसन भाई रबारी।
0: कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण भाई,
1: थैंक यू सर।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है महान।
0: महान फिल्म का कौन सा?
1: ये दिल जो आता है उस दिन जवानी पे, ऐसा करके गाना है सर। हाँ सर, और थोड़ा नाम दे सकते हैं?
0: बिल्कुल बोलिए।
1: मेरी मिसिज है इरा, लड़का है कमल रबारी और विजय रबारी। और सब बढ़िया है सर? उधर
0: बिल्कुल बढ़िया,
1: गर्मी कैसा चलता है आपके यहाँ?
0: गर्मी खूब है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? अच्छा,
0: मेरा विकास पारिक है।
1: बहुत ही बढ़िया। आपके साथ पहली बार मुलाकात हुई सर,
0: हाँ,
1: पहली बार
0: पहली
1: बात हो पहली बार बात होती है सर।
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: पहली
1: धन्यवाद।
0: बार आपसे बात हो रही है।
1: हाँ हाँ सर,
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी हेलो मन भावन, मैं गांव चैनपुरा तहसील लोरिमना जिला बालोतरा से जगदीश भारती गोस्वामी बोल रहा हूँ सर। जी
0: हाँ जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है, और आज हेलो मन भावन ने फोन लगाया, मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे केंद्र के लिए प्रयास किए और आपका फोन लग भी गया।
1: जी, काफी बार ट्राई किया, अंत में लग गया।
0: चलो अच्छी बात है। जगदीश जी क्या करते हैं आप?
1: जी विकास जी, मैं तो वैसे तो खेती बाड़ी का काम भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ सिंगिंग का काम कर रहा हूँ। वैसे मैं भजनों का कलाकार हूँ।
0: ईश्वर की
1: और
0: आराधना कर
1: जी
0: रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सूरजगढ़ आकाशवाणी का जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम। हेलो मन भवन गौरबंद, और लगातार सुनता रहता हूँ मैं बड़े चाव से। बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के कार्यक्रम आपको?
1: अच्छे लगते हैं, मैं तो काफी वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। जब जोगा सिंह जी आते थे, वीरू राम जी आते थे, उस समय से सुनता आ रहा हूँ आकाशवाणी सूरतगढ़।
0: आज आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम में?
1: आज मेरे साथ में तो मेरे दो लड़के हैं, इंद्रेश भारती, विजय भारती, और मेरे वाइफ है मलिता गोस्वामी,
0: जी
1: और बाकी सब सब रेडियो सुनने वाले को मेरी तरफ से राम राम है, नमस्ते है। पसंद का कोई भी गाना सुना दो।

आज के कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया, आप ये गीत सुनें और अपने साथी विकास पारिक को अनुमति दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप कार्यक्रम हेलो मन भावन सुन रहे थे। निर्देशक व संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तोता थे विकास पारिक। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि

0: दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि

0: के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर